आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि

0: 92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 92.2 मेगाहर्ट्ज पर। ए तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तो हां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंदी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: देख, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
6: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
7: ए छोड़ो, रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
8: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
7: क्यों?
8: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
9: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
10: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
11: वही असली तरक्की।
10: एक कदम स्वच्छता की ओर।
12: मुझे उड़

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने
4: का। अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। एशियाई खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को मिलेगी पुरस्कार राशि। बीपीएल चयन में अब परिवार पहचान आधार नहीं होगा। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल क्षेत्र में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पाबंदी। पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा। ग्राम सभा में विकास कार्यों का रोड मैप तैयार होगा। इसी के साथ अब समाचार विस्तार से।

जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों पर प्रदेश सरकार धनवर्षा करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार पुरुषों की मॉडर्न पेंटाथलोन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले सावन वरवाल को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की हिमाचली खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ऋतु

नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी कर रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 4 करोड़, रजत पदक के लिए 2.5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। सरकार ने ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था की जानकारी दी है। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के चयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब परिवार पहचान के आधार पर किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या हटाने का फैसला नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ग्राम सभा द्वारा तय की गई पात्रता के आधार पर बीपीएल सूची तैयार की जाएगी। विभाग के अनुसार परिवार पहचान प्रक्रिया और बीपीएल सूची प्रक्रिया दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या अपात्र पाए जाने पर सूची से बाहर करने की प्रक्रिया ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर होगी। बताया गया है कि परिवार पहचान के बाद भी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा, वहीं बीपीएल पात्रता के लिए अपात्र पाए गए परिवारों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के लाहौल स्पीति दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और इसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन तथा मानव रहित हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, रिवर राफ्टिंग और अन्य संबंधित पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी निर्धारित अवधि के दौरान अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के आसपास अस्थायी और स्थायी रूप से लगाए गए दुकानदारों तथा अन्य संबंधित लोगों को अपनी व्यवस्थाएं हटाने और कब्जे वाले स्थानों को 30 सितंबर तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पुलिस और वन विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी 3,758 पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान गांव में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभाओं में गांव की स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को लेकर ग्रामीण अपने सुझाव दे सकेंगे। ग्राम सभा में नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर भी चर्चा होगी। स्थानीय स्तर पर नशे की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता गतिविधियों और सामुदायिक भागीदारी पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में केवल विकास योजनाओं पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि पंचायतों में पहले से चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। विभाग ने पंचायत सचिवों और संबंधित अधिकारियों को ग्राम सभा की सूचना समय पर ग्रामीणों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि गाँव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक रूप से चर्चा की जा सके। सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर ने पुरुषों के लिए सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 180 पद भरने जा रहा है। इसके लिए साक्षात्कार 3 अक्टूबर 2026 को एसटीएम ऑफिस कैंपस शाहपुर, 5 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय ज्वालाजी, 6 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय नगरोटा वगवा, 7 अक्टूबर को नूरपुर, 8 अक्टूबर को इंदौरा और 9 अक्टूबर को पालमपुर में प्रातः 11 बजे से लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 19 से 40 वर्ष की आयु के बीच दसवीं उत्तीर्ण व इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 18,500 से 24,000 रुपए प्रतिमाह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दी जाएंगी। जिला दंडाधिकारी हेमराज वैरवा ने जिला कांगड़ा में मांस और पके हुए भोजन की वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। इस संदर्भ में जारी एक अधिसूचना के अनुसार बाजार में आम जनता या उपभोक्ताओं को उचित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये दरें निर्धारित की गई हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी विक्रेता इससे अधिक दर वसूल नहीं कर सकेगा। मीट बकरा या भेड़ का 600 रुपए प्रति किलो, मीट सुअर का मीट 300 रुपए प्रति किलो और चिकन 240 रुपए प्रति किलो, मछली बिना तली हुई 240 रुपए प्रति किलो, तली हुई मछली 340 रुपए किलो और इसी प्रकार से जो है खाने की चीज़ों को पे भी निर्धारित शुल्क जो है वो लगाया गया है। उनका कहना है कि दूध लोकल सप्लाई 60 रुपए प्रति लीटर, उबला हुआ दूध लोकल सप्लाई 70 रुपए प्रति लीटर, पैक दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 90 रुपए और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 360 रुपए बेचा जाएगा। सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें और निर्धारित दरों के अनुसार ही वसूली करें। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।

नया दिन, नए दोस्त, नई बातें, नए गीत के साथ हाजिर हो गई है आपकी दोस्त सुमन। श्रोताओ, आप सभी जानते हैं कि हर दिन आपके साथ नए नए दोस्त जुड़ते रहते हैं, तो आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, रेडियो गुंजन के स्टूडियो में हम हाजिर हो गए हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, और जानकारियों के साथ बहुत कुछ हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो श्रोताओ, वो जानकारियाँ भी हम आपके साथ साझा करेंगे और इस दो घंटे के सफ़र में हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। तो श्रोताओ, अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और साझा करते हैं आपके साथ आज का विचार। कहते हैं सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएँ आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। और बिल्कुल सही बात कहने वाले ने कही है। और होता ऐसा है श्रोताओं कि कई बार हम समस्याओं से घबरा जाते हैं, परेशानियों से घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, हमारे लिए नया काम है, हम क्या करेंगे। बड़ा ही परेशान हो जाते हैं, बड़ा ही अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है। मगर दोस्तों, होता ऐसा है कि जब समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं तो बहुत कुछ हमें सिखा कर जाती हैं, हमें बहुत मजबूत बना कर जाती हैं। हमारी ये सोच होती है

कि अरे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। नई चीज़ होती है, नया काम होता है, पर जब समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के जरिए ही हमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। हम सीख जाते हैं, हम उस समस्या से जब उभर जाते हैं तो हमें वो समस्या जो है बिल्कुल छोटी सी लगती है, और किसी दूसरे पर वो समस्या आती है तो हम उसे समझाते हैं कि अरे कुछ नहीं है, ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है, अब आपको इस तरह से करना चाहिए। हम उसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं कि अब ऐसे नहीं, ऐसे होगा वो काम। तो श्रोता, जब तक हम किसी काम में, किसी परेशानी में, किसी समस्या में नहीं पड़ते हैं, तब तक हमें हर काम मुश्किल लगता है, और जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो वो काम हमें आसान लगता है। और बिल्कुल सही बात है श्रोता, ज़िंदगी में हर काम, हर समस्या, हर परेशानी पहली बार ही आती है, जब हम उसे जूझते हैं, निकलते हैं, तो हमें वो काम आसान लगने लग पड़ता है। तो ज़िंदगी में श्रोता, ये जो परेशानियाँ होती हैं, ये हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इन्हीं से हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। तो इन्हीं बात और जानकारियों के साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर।

श्रोतो, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब हम इतिहास की ओर रुख करते हैं। 30 सितंबर का दिन है। 30 सितंबर का दिन जो है देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म और निधन के लिए जाना जाता है। और थोड़ा सा हम घटनाओं की ओर रुख करें तो 1687 की बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने हैदराबाद स्थित प्रसिद्ध गोलकुंडा किले पर कब्जा किया था और 1947 में पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे। इसके साथ साथ 1993 में महाराष्ट्र के लातूर और औरंगाबाद क्षेत्र में सुबह सुबह आई विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही हुई थी जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के इतिहास, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद पर अहम फैसला देते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था। तो श्रोता, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अभी बहुत सारी आपके साथ साझा करनी है, उन्हें भी हम लेकर आए हैं। तो थोड़ी देर रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस प्यारी सी सुबह में सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और इसी नमस्ते के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और हमारी बात हो रही थी आज के इतिहास के बारे में, और आज के इतिहास में बहुत सारे महान व्यक्तियों के जन्म भी हुए हैं और निधन भी हुए हैं। पहले जन्म की बात करते हैं। 1837 में पंडित श्रद्धाराम शर्मा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना भी जाना जाता है। और 1922 में ऋषिकेश मुखर्जी भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता रहे हैं। उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो आज के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी बात करें तो 2001 में माधवराव सिंधिया, कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री, जिनका निधन एक विमान दुर्घटना में हुआ था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात करें तो विशेष दिन है। भाषा और अनुवाद के महत्व को समझाने के लिए 30 सितंबर को यह दिवस भी मनाया जाता है। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी बातों को देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी बिल्कुल, साथी और दिल परदेसी हो जाता है। हम कहीं बैठे हो, दिल कहीं का कहीं पहुंच जाता है। एक समय में हमारा जो दिल है एक जगह नहीं होता है, बहुत कुछ सोच रहा होता है, बहुत जगहों पर पहुंचा होता है। फिर उसे हम वापस लेके आते हैं कि अरे नहीं, हमें तो अभी अपने दोस्तों से बात कर रही है। इसी तरह से गीत के जरिए हम भी खो गए थे और कहाँ के कहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फिर से याद आया कि हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमें तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी उन तक पहुँचानी है, और फिर से हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में आ पहुंचे हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां। उन्हीं जानकारियों में श्रोताओं, बात करें तो आज के दिन को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इसे 30 सितंबर को मनाया जाता है, और इसके देश की बात करें तो ये भाषा पेशेवर अनुवादकों और दूभाषियों के कार्य का सम्मान करना है जो देशों को जोड़ते हैं और वैश्विक शांति को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओ, ये दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक रूप से 30 सितंबर को इस दिवस के रूप में इसे मान्यता दी थी। अब थोड़े से आज के दिन के महत्व की बात करें तो वैश्वीकरण के दौरान विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और देश के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए अनुवाद बेहद ज़रूरी होता है। तो श्रोतो, कार्यक्रम में हम और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल के ठीक बाद हम आपको लिए चलेंगे गीत संगीत की ओर। तो इसके लिए करें थोड़ा सा इंतज़ार और सुनते हैं अंतराल।

श्रोता इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम अनुवाद की बात कर रहे थे। तो आज श्रोता, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें अनुवाद की अहम भूमिका है। चाहे वो कोई किताब हो, फिल्म हो, या फिर हो कोई विदेशी भाषा में लिखा हुआ लेख, अनुवाद की वजह से आज हमारी पहुंच काफ़ी व्यापक हो गई है। जरा सोचिए, अगर अनुवाद नहीं हो तो कैसे अलग अलग देशों के लोगों के विचार और संस्कृति को हम समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही ना दोस्तों। तो इसी तरह से हमारे साथ होता है, जब तक हमें अनुवाद का पता नहीं होगा तब तक हम किसी बात को समझ नहीं सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम मना रहे हैं, तो इस दिन को मनाने का मकसद अनुवाद के महत्व को समझना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अनुवाद कैसे हमारी दुनिया को जोड़ता है और अलग अलग संस्कृतियों के बीच में एक पुल का काम करता है। अब श्रोता, हम कार्यक्रम में ये बात करेंगे कि क्यों मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मनाने के पीछे एक खास कारण है। ये दिन सेंट जेमोर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और सेंट जेरोम को अनुवादकों का संरक्षण संत कहा जाता था और वे एक रोमन पुजारी थे जो उत्तर पूर्वी इटली के रहने वाले थे। और सेंट जेरोम मुख्य रूप से बाइबल के नए नियमों के ग्रीक पांडुलिपियों का लेटिन में अनुवाद करने के लिए जाने जाते थे। उनके इस अनुवाद को वल्गेट कहा जाता था। ये अनुवाद पश्चिमी चर्चा के लिए कई सदियों का एक मानक पाठ रहा है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि बहुत सारे गीत भी हमें अपने श्रोताओं को सुनवाने हैं और श्रोताओं को गीतों का भी इंतज़ार रहता है। जानकारियाँ भी जीवन में ज़रूरी है और संगीत भी ज़रूरी है क्योंकि संगीत जो है जीवन को सुकून देता है और कुछ पलों के लिए हम इन गीतों में भी खो जाते हैं। तो आइए फिर से थोड़ा सा खोने की कोशिश करते हैं क्योंकि गीत बहुत ही आनंद हमें देते हैं, तो इस आनंद में हम भी खोने का प्रयास करते हैं।

श्रोता, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो हम अनुवाद की बात कर रहे थे श्रोताओं, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत की बात करें तो इस दिन को मनाने का विचार सबसे पहले इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने दिया था। FIT एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन साल 1953 में हुआ था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के अनुवादकों को एक साथ लाना और अनुवाद पेश करने को बढ़ावा देना था। साल 1991 में FIT ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अनुवादकों के लिए एक गौरव का दिन था। ये दिन हमें अनुवाद के महत्व को समझाने और अनुवादकों के योगदान को मान्यता देने का भी मौका देता है। फिलहाल हमें भी मौका मिल गया है अपने श्रोताओं को गीत सुनाने का, तो देरी किस बात की, आइए जल्दी से कार्यक्रम का गीत मिलजुल कर एंजॉय करते हैं।

0: तो इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 9:50 और आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी शिमला है, अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत 50 शहरों में चयनित हुए शिमला और धर्मशाला, अपनाए जाएंगे स्वच्छता के उच्च प्रदर्शन मानक। नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन में सोलन जिले की 22 महिलाएं सिखोगी उन्नत कृषि और दुग्ध उत्पादन के गुण। प्रदेश में मानसून से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालय के लिए और कुल्लू जिला में युवाओं के एक समूह द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर की जा रही विशेष पहल। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के 50 आदर्श शहरों के विकास के लिए प्रगति 50 पहल को शुरू किया है। इसका शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 24 राज्यों के लिए 50 चयनित शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करेंगे, जो देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आदर्श स्थापित होगा। इन 50 शहरों में हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान संघ द्वारा नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोलन जिला से भी 22 किसान महिलाएं शामिल हो रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि इसके माध्यम से उन्हें उन्नत कृषि सहित दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सकेगी।
2: महिला काम संघ का एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को उनकी आजीविका के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, किस तरीके से हम आजीविका को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत आहित हैं, इससे हम अपनी खुद की आजीविका कर सकते हैं। खेतों में किस प्रकार से खेती, मिश्रित खेती करनी है, वो भी हमें वो बताएंगे। दूध के द्वारा हम किस प्रकार अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम UNO के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे।
3: कल जो है हम UNO द्वारा 2026 में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो इसकी तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज जो है 22 महिला है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है, वहाँ जाके हम UNO द्वारा जो भी हमें शिक्षण दिया जाएगा उसको हम सीख लेंगे और अब हर गांव में उस प्रशिक्षण को हम सुचारू रूप से हर महिला को देंगे, जिससे कि उनकी मासिक जो है आमदनी बढ़े।
1: प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है। ये दल आज कुल्लू जिला के बंजार में हुए नुकसान का आंकलन करेगी। आज देर शाम ये दल शिमला में मुख्य सचिव सहित अन्य सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक करेगी। अपने दौरे के अंतिम दिन कल ये दल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से अब पात्र लाभार्थियों को देश भर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है। हमीरपुर जिला की खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि ये विशेष सुविधा प्रवासी श्रमिकों और रोजगार के कारण अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से अब परिवार का कोई भी सदस्य देश के किसी भी शहर अथवा राज्य में राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
4: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
5: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
4: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
5: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
6: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: कुल्लू जिला में युवाओं के एक समूह द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों से युवा पहाड़ों में सिर्फ सैर करने नहीं बल्कि यहाँ की चुनौतियों और जन समुदाय कार्यों में भागीदारी करने पहुँच रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
7: युवाओं के एक समूह द्वारा हिमालय क्षेत्र में एक अलग ही ट्रेंड शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये युवा गांवों को पैसों से नहीं बल्कि अपनी सोच, समय, हुनर और काम करने की क्षमता से अपनाने की पहल कर रहे हैं। यहां गांव को अपनाने का अर्थ आर्थिक जिम्मेदारी लेना नहीं बल्कि उस जगह के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें युवा अपनी क्षमता के अनुसार लगातार योगदान दे सके। चंडीगढ़ के निखिल शर्मा की अगुवाई में शुरू हुई ये पहल देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को हिमालयी समुदायों से जोड़ रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ पहाड़ों की सैर करना नहीं बल्कि वहां के लोगों के बीच जाकर उनकी चुनौतियों को समझना और अपनी क्षमताओं के जरिए पर्यावरण एवं समुदाय से जुड़े प्रयासों में योगदान देना है। इसी कड़ी में जिला की सैंज घाटी के मनियाशी, देवरी और सराहन गांव में युवाओं ने स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर एक पहल की। स्कूलों में युवाओं ने विद्यार्थियों के साथ प्लास्टिक कचरे, उसके पर्यावरण पर असर और वेस्ट मैनेजमेंट पर संवाद किया। खेलों और इंटरैक्टिव गतिविधियों के जरिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। वहीं ड्राइंग और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से छोटे बच्चों को स्वच्छ गांव और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: डाक विभाग के गौरवपूर्ण इतिहास और कार्यशैली के साथ ही युवा पीढ़ी तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में डाक टिकट संग्रह फिलेटली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस प्रदर्शनी में वर्ष 1840 से लेकर आज तक के डाक टिकटों के जरिए ऐतिहासिक जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य डाक टिकट संग्रह की कला को पुनर्जीवित करना है जिससे आम लोगों, विशेषकर युवाओं व बच्चों को प्रत्येक डाक टिकट के पीछे छिपे समृद्ध सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक मूल्यों को जानने का अवसर मिल रहा है। प्रदर्शनी में बच्चों व युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। लाहौल स्पीति जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर में बाल अधिकारों व बाल सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष शशि किरण और SHO शेष राज ने शिविर में बच्चों को साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच बैड टच और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। इस शिविर में 150 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भाग लिया। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से 21वें पायदान से तीसरे स्थान पर पहुंचा हिमाचल। हिमाचल दस्तक के शब्द है, CM ने हाईकमान के सामने रखा शिक्षा का मॉडल। दैनिक जागरण के अनुसार हाईकमान से सुक्खू बोले, कुलपतियों की नियुक्ति में लोक भवन की अड़चन। अमर उजाला की एक खबर है, एक मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा के बीच हाईकमान से मिले सुक्खू। दैनिक भास्कर की एक खबर है, इस बार आधा रह गया सेब का कारोबार, पिछले साल हुई थी 2.25 करोड़ पेटियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत प्रगति 50 शहरों में चयनित हुए शिमला और धर्मशाला, अपनाए जाएंगे स्वच्छता के उच्च प्रदर्शन मानक। नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन में सोलन जिले की 22 महिलाएं सीखेगी उन्नत कृषि और दुग्ध उत्पादन के गुण। प्रदेश में मानसून से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल आज करेगा कुल्लू के बंजार का दौरा, देर शाम शिमला में मुख्य सचिव के साथ होगी बैठक। और कुल्लू जिला में युवाओं के एक समूह द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को लेकर की जा रही विशेष पहल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
0: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, कहते हैं श्रोताओं दिन की शुरुआत जो है अच्छे से हो तो पूरा दिन अच्छे से जाता है। और बिल्कुल सही बात है, दिन हमारा निकल चुका है, चढ़ चुका है, और इस टाइम तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो है अपने अपने कार्यालय भी पहुंच चुके होंगे, बहुत सारे लोग अपने कामकाज पर निकल भी चुके होंगे, क्योंकि हम सभी की जो दिनचर्या होती है बहुत ही व्यस्त होती है। और अगर हम कामकाज पर नहीं निकलेंगे तो हमारा दिन किस तरह से पूरा होगा, किस तरह से टाइम निकलेगा? और जब तक काम पर नहीं जाएंगे तब तक हमारा जो घर का काम है, जैसे कि हम अपने खर्चों की बात करें तो किस तरह से पूरे होंगे? जब तक काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगा, और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे परिवार को चलाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। हर चीज़ पैसे से आती है, खाना पीना, कपड़े, बस्तर, घर, वाहन, हर चीज़ पैसे से आती है, और पैसे कमाए जाते हैं काम काज करने से। जब हम बाहर निकलेंगे, कोई काम करेंगे, तभी तो पैसा कमा पाएंगे, और जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कहीं से भी पैसा हमारे हाथ नहीं आता है। तो साथ ही साथ श्रोताओं, बहुत सारी बातें अभी भी आपके साथ करनी हैं, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

खैर श्रोताओं, जब तक गीत चल रहा है थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं, क्योंकि बातों का जो पिटारा है हमारे पास कम नहीं होता है। और बातें होती रहती हैं तो कहीं ना कहीं मन भी लगा रहता है, और हमें तो मौका मिलना चाहिए अपने श्रोताओं के साथ बातचीत करने का। तो खैर, मौका हमें मिल चुका है बातचीत करने का। बातचीत के साथ साथ आइए अपनी सुबह को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं और कार्यक्रम का प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाते हैं। थोड़ा सा आप भी गुनगुना लें, नाच लें और खूब सारी मस्ती भी कर लें, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं उन पर मन करता है कि थोड़ा झूम लिया जाए। तो ये मिलजुल कर एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो मिशन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम श्रोताओं लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते, और इसी नमस्ते के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन की बात करें श्रोताओं, तो आज के दिन को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, और भारत में हर साल जो है सितंबर में से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार और साथ ही साथ जो है पोषण के बारे में जानकारी देना भी होता है, और लोगों को पोषण के बारे में पता चलता है कि पोषण क्या है और संतुलित आहार, कुपोषण से बचाव, बच्चों और माताओं से स्वास्थ्य तथा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करता है। इसके साथ साथ श्रोताओं, पोषण का अर्थ है कि सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त मात्रा में पानी देना है। बच्चों के विकास, इसके साथ साथ श्रोताओं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और हर उम्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पौष्टिक भोजन देना भी होता है। सही पोषण कहते हैं श्रोताओं स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी होती है, और अपनी थाली में विविध प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें शामिल करने चाहिए, और यही स्वस्थ भारत की ओर हमारा जो है पहला कदम है। अब श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि पोषण आहार है क्या चीज़। पोषण आहार की बात करें तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा तथा विकास के लिए उपयोग भी करता है। श्रोताओं, कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसके साथ साथ अनाज, आलू, चावल, ये सभी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। थोड़ी सी बात अगर हम प्रोटीन की करें तो मांसपेशियों के निर्माण और मुरम्मत में मदद करता है प्रोटीन। ये दालें, दूध, अंडे और सोयाबीन से हमें मिलता है। तो अगर हमारा खाना खाने को कभी मन ना भी करे तब भी हम कटोरी भर दाल पी सकते हैं, इससे भी हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। छोटी छोटी बातों का श्रोताओं हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब वसा भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। वसा की बात करें तो शरीर को ऊर्जा देती है और हमारे शरीर के अंगों की रक्षा भी करती है। जैसे तेल, घी और मेवे, ये ज़रूर अपने खाने में शामिल करने चाहिए। कभी कभार क्या होता है श्रोताओं, हम ये सोचते हैं कि मेवे जो है बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम सभी मिडिल फैमिली से होते हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों से हम परहेज करते हैं। लेकिन श्रोताओं, अगर हम ये सोच के खाएं कि ये हमारे शरीर के लिए बेहतर होते हैं, दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हम अपने खाने में हर वो चीज़ शामिल करें जिन चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इन्हें ले सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन और खनिज की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और फल बेहद ज़रूरी होते हैं। आजकल के मौसम की बात करें, सर्दियों के मौसम की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी हरी सब्जियां जो है उपलब्ध हो गई हैं। साग, पत्ता गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, गठ गोभी, हर तरह की गोभियां जो है हमें मार्केट में मिल जाती हैं। इसके साथ साथ मूली, गाजर, अगर हम मार्केट में जाकर देखें तो हमारी मार्केट सब्जी मंडी जो है हरियाली से भरी रहती है। अगर हम उन्हें अपने आहार में शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। इसके साथ साथ श्रोताओं, पानी को कैसे हम भूल सकते हैं। पानी और फाइबर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, और पानी जो है हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को भी बाहर निकालता है। साथ ही साथ जो है पानी की वजह से हमारे शरीर में नमी बनी रहती है। अगर जैसे हम बात करें, सर्दियों के सीज़न आ गया है, सर्दियों का मौसम आ गया है, तो ड्राइनेस हम सभी को बहुत होती है। हमें से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो पानी को नहीं पीना चाहते हैं और ये कहते हैं कि अरे सर्दी है तो मन नहीं करता है। श्रोता, अगर आपका मन ठंडा पानी के पीने को नहीं करता है तो गुनगुना पानी जो है आप पी सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो सिप सिप करके अगर पानी को पिया जाए तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है पूरी हो जाती है। तो श्रोता, हमारी बातों का सिलसिला तो ख़त्म होने वाला नहीं है, आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो जो अंदर की बातें हैं वो बाहर निकलती ही जाती हैं। तो फिर से क्यों ना थोड़ा सा हम कार्यक्रम में रुक जाते हैं, नहीं तो आप तो सुनेंगे कि आज हमारे दोस्त जो हैं बोलने के मूड में हैं और गीत सुनवाने के मूड में नहीं है। नहीं श्रोता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीत तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, क्योंकि गीतों का पिटारा भी हम अपने साथ लेकर ही आते हैं। तो थोड़ा सा रुकते हैं कार्यक्रम में और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

खान पान के तरीके, पोषण संबंधी सेवाएं हों। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि देश के सभी बच्चे, किशोर और महिलाओं को बेहतर पोषण मिले, जिससे उनका क्षमतापूर्वक विकास और प्रगति हो सके। श्रोताओं, पोषण बच्चों को स्वस्थ, खुश, उत्पादक किशोर और वयस्कों को विकसित होने में सक्षम बनाने का आधार भी होता है। बच्चों को जीवित रहने, उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए पर्याप्त और ठीक संतुलित आहार महत्वपूर्ण होता है और सुपोषित बच्चे जो है स्वस्थ, उत्पादक और सीखने के लिए तैयार रहने की संभावना अधिक उनमें रहती है। भारत में लाखों बच्चे और युवाओं के लिए पौष्टिक और स्वस्थ भोजन करना कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। बच्चे या तो कम खाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। कुछ मामलों में बच्चे पर्याप्त खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनका भोजन पौष्टिक और विविध नहीं होता है, जिससे शरीर को ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इन सभी स्थितियों में बच्चों का विकास और उनकी सेहत प्रभावित होती है, जो बड़े होकर जीवन पर असर डालती है। श्रोताओं, पोषण के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास और सुधार होने के बावजूद बच्चों में कुपोषण हो जाता है और जो उसके विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण के अलग अलग रूप, अलग अलग तरह की विकास संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे बच्चे अपने उम्र के अनुसार छोटे रह जाते हैं या उनकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत दुबले पतले होते हैं। इसके लिए उनके शरीर और दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचता है, जिसका असर उनकी सीखने की क्षमता और बड़े होकर काम करने और कमाने की क्षमता पर भी पड़ता है। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अपने भोजन में हमें वो हर चीज़ शामिल करनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। हम में से कई बच्चे ऐसे हैं और हम अपने बच्चों की बात करें तो हमारे आसपास ही बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत से कुपोषित लगते हैं या बहुत कमज़ोर लगते हैं, आए दिन बीमार रहते हैं और खांसी जुकाम उन्हें रहता ही है। तो अगर वो किसी चीज़ को नहीं खाते हैं तो हम अभिभावकों का फ़र्ज ये बनता है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि उसे अलग अलग तरीके से बच्चों को दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो उसे हम थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड करके, आटे में मिक्स करके उसकी रोटी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, या किसी दाल में पालक को डालकर भी दिया जा सकता है। अलग अलग तरीके से बच्चा अगर उस चीज़ को खाता है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में जो है आयरन की मात्रा भी पूरी हो जाती है और उसके शरीर को हर एक पौष्टिक तत्व पूरी तरह से मिल जाता है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को, अभिभावकों को भी इस तरह का ध्यान रखना चाहिए जब बच्चे पूरी तरह से भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम जो है पोषक तत्व होते हैं अपने शरीर में पूरी तरह से पहुँचा सकते हैं। तो फिलहाल इस समय हमें पहुँचाना है अपने श्रोताओं तक प्यारा सा गीत, तो बिल्कुल देरी न करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओ, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आज के दिन को हम मना रहे हैं पॉडकास्ट डे, ब्रॉडकास्ट नहीं श्रोताओ, पॉडकास्ट डे। बहुत सारे श्रोता समझ रहे होंगे कि ये पॉडकास्ट क्या होता है। श्रोताओ, आज के दिन को हम यही मना रहे हैं, PODCAST, पॉडकास्ट डे। ये दिन पॉडकास्टिंग की दुनिया, इसके रचनात्मक श्रोताओं और डिजिटल ऑडियो माध्यम के बढ़ते प्रभावों का जश्न मनाने का दिन होता है। श्रोताओ, कोई ना कोई दिन जो है ढेर सारी जानकारियाँ लिए हुए होता है, तो आज के दिन भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो पॉडकास्ट डे की हम बात कर रहे थे। पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो या वीडियो कार्यक्रम होता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट पर ऑनलाइन सुना या डाउनलोड किया जाता है। इनसे हम सुविधाओं के अनुसार कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और आजकल जो वैसे भी बहुत ज़्यादा तकनीक हमारे सामने आ गई है जिससे कि हम बहुत सारा लाभ भी ले सकते हैं। अब आज के दिन के महत्व की श्रोताओं बात करें तो ऑडियो संस्कृति का प्रसार नए पॉडकास्टों को अपनी आवाज़ और विचार दुनिया के सामने रखने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ साथ विविध विषयों की बात श्रोताओं करें तो आज पॉडकास्ट केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, समाचार, तकनीक, स्वास्थ्य और पोषण जैसी कई विषयों पर ज्ञान को बढ़ाने का स्रोत भी माना जाता है। आज के दिन को हम ये पॉडकास्ट दिवस मना रहे हैं। श्रोताओं, तो ये पॉडकास्ट संचार और मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम भी बन चुका है जिसमें हम अपनी पसंद के विषय, जैसे हमने पहले भी बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, संगीत, इतिहास, कहानियाँ या अन्य किसी व्यक्ति के अनुभवों को अपनी सुविधाओं के अनुसार सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की खासियत श्रोताओं ये रहती है कि इसे सुनने के लिए हमें किसी तय समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम इसे कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। अब आज के दिन के महत्व की बात करें, आज के दिन के उद्देश्य की बात करें तो इस दिन का उद्देश्य पॉडकास्ट बनने वाले और सुनने वाले को प्रोत्साहित करना है और इस माध्यम से रचनात्मक और ज्ञानवर्धक संभावनाओं को सामने लाना भी है। तो आज के दिन को हम भी कुछ अच्छा सुनने, कुछ उपयोगी बात दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। श्रोताओं, और बातें तो हमारी होती रहती है लेकिन कुछ खास बातों को अपने दोस्तों तक, अपने श्रोताओं तक पहुँचा दिया जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छी आवाज़, एक अच्छी कहानी और एक अच्छा विचार किसी के दिल को भी बेहतर बना देता है। तभी तो हम एक अच्छे विचार के साथ अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं का दिन भी अच्छा रहे। वैसे हम ऊपर वाले से भी यही दुआ करते हैं कि हमारे श्रोताओं का दिन भी अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमेशा हंसते मुस्कुराते और स्वस्थ रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद लेते रहें। तो इन्हीं जानकारियों के साथ फिर से हम आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो थोड़ा सा करें इंतज़ार और आप तक पहुँचाते हैं हम कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। हम पॉडकास्ट डे की बात कर रहे थे। पॉडकास्ट शब्द आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। आज पॉडकास्ट केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, मनोरंजन, इतिहास, करियर, तकनीक और सामाजिक मुद्दे जैसे अनेक विषयों पर बात होती है। अब पॉडकास्ट की खासियत की बात करें तो इसे कभी भी कहीं भी सुना जा सकता है। किसी एक विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इसमें एक व्यक्ति, दो लोग या पूरी टीम से बातचीत हो सकती है। श्रोताओं, अपने पसंद के कार्यक्रमों को भी हम इस पर सुन सकते हैं और साथ ही साथ पॉडकास्ट मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है। पॉडकास्ट और रेडियो में अंतर की बात करें तो रेडियो के कार्यक्रम अक्सर तय समय पर प्रसारित होते हैं, जबकि पॉडकास्ट को रिकॉर्डिंग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार उसे रोका जा सकता है, दोबारा सुना जा सकता है और अपनी पसंद का एपिसोड चुना भी जा सकता है। अब आज के दिन के महत्व की बात करें तो पॉडकास्ट लोगों तक जानकारी, विचार पहुँचाने का प्रभावी माध्यम है। विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, विद्यार्थी किसी विषय को समझ सकते हैं, आम लोग अपनी रुचि के विषयों पर नई बातें जान सकते हैं। साथ ही साथ पॉडकास्ट लोगों को अपनी आवाज़ और विचार दुनिया तक पहुंचाने का अवसर भी देता है और यही डिजिटल युग की खूबसूरती है कि ज्ञान, मनोरंजन और संवाद किसी पसंद के समय अपने साथ रह सकते हैं। तो ढेर सारी जानकारियाँ लिए श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम है और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में मनोरंजन ना हो तो बिल्कुल बात बन नहीं सकती है। तो आइए थोड़ी सा बात को बनाने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम के ये सुरीला सा प्यारा सा गीत। तो आइए एंजॉय करते हैं इस गीत।

तो संगीत की इन धुनों के साथ फिर से हम कार्यक्रम में वापस आ चुके हैं और बात हमारी हो रही है ब्रॉडकास्ट डे के बारे में, थोड़ी सी पॉडकास्ट डे के बारे में। श्रोता आज उलझन में पड़े होंगे कि कौन सा डे है आज। भाई श्रोता, आज है पॉडकास्ट डे, जिसे हमने पहले भी बताया PODCAST। हर साल आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट दिवस मनाते हैं, और पॉडकास्ट भी एक ऐसा ही है, लेकिन इसमें आज अपनी पसंद का कोई भी शो या कहानी कभी भी कहीं भी सुनी जा सकती है। ये एक तरह का ऑडियोग्राफ है जिसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट या डाउनलोड करके भी सुना जा सकता है। बहुत सारी जानकारियाँ लिए जो है आज का समय है, और बहुत सारी सुविधाओं से भरा हमारा जीवन हो गया है। इन सुविधाओं का हमें श्रोता पूरा लाभ लेना चाहिए, और लाभ क्यों ना लें, क्योंकि जब हमारे हाथ में हर एक चीज़ है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैब, तो इसको ज़रूर चलाएं, इसे ज़रूर सीखें, और बहुत सारा ज्ञान इनसे मिलता है। यूँ कह सकते हैं कि हम अपनी जेब में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें लेकर घूमते हैं। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जब हम समझ आते हैं तो हर चीज़ हमें आसान लगती है। वैसे देखा जाए बहुत सारी चीज़ें फ़ोन में भी ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन सीख सिखा कर हर चीज़ जो है आसान लगती है। तो ये थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश हम भी करते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

लेकिन लेकिन श्रोता, ज़िंदगी में प्यार होना बेहद ज़रूरी है और प्यार से ज़िंदगी जो है खुशहाल बनती है, खूबसूरत बनती है और प्यार के सहारे ही इंसान जो है ज़िंदगी का सफ़र तय करता है। तो इसी प्यार के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा की उपयुक्तता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय की बैठक कक्ष में कांगड़ा वैली कार्निवाल के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्निवाल के दौरान प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवाल 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी धर्मशाला में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे देश तथा प्रदेश के अति विशिष्ट व्यक्तियों का प्रवास रहेगा। ऐसे में उन्होंने संबंधित विभागों से कार्निवाल की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रोतो, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ हम अपने श्रोताओं को मनोरंजन कार्यक्रम में ना करवाएं तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। तो ये फिर से थोड़ा सा हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत। तो श्रोताओ, जब तक गीत नहीं चलता है तब तक हम बातें ही कर लेते हैं, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो कोई बात नहीं, इन प्रॉब्लम से हमें जूझते हुए आगे बढ़ना है और बातचीत अपनी करनी है। और बातचीत तो हमारी वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होती है, समय ख़त्म हो जाएगा लेकिन बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। लेकिन बीच बीच में हमें थोड़ा सा देना पड़ता है ब्रेक, क्योंकि ज़्यादा बातें भी होश होता हो तो कहीं ना कहीं आपको भी इंतज़ार रहता है गीत संगीत का, और थोड़ा सा मनोरंजन कार्यक्रम में होना ज़रूरी होता है। तो श्रोताओं, मनोरंजन तो हम आपका करवाएंगे लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और कहते हैं इंतज़ार का फल जो है मीठा ही होता है, तो आइए इस मीठे को और दोगुना करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

शदौ घड़ी की सुइयां अब इजाजत नहीं दे रही है कि हम आपसे ज्यादा बातचीत करें। बातचीत खैर अगली बार फिर से करेंगे, ढेर सारी जानकारी और गीत संगीत के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक दीजिए अनुमति कार्यक्रम को समाप्त करने की, तो उसके लिए गुड बाय, टेक केयर। तब तक रखें आप अपना ध्यान, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामकाज में व्यस्त रहें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो। है
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपने वो कोने वाली मेज पे,
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना है।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत था, आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
3: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो। है
4: कहाँ रखेंगे टीवी?
5: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
2: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
2: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
2: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो
2: शुक्ला जी।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना है।

0: अरे
1: सांप
0: अरे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

0: और ये है एक स्पेशल कार्यक्रम और आज का ये सफर हम तय करने वाले हैं वंडर बंजारा जी के साथ। तो वंडर बंजारा इनका ऑफिशियल नाम है लेकिन वैसे इन्हें कहते हैं मनीष वर्मा। उम्मीद करती हूँ आज आपके साथ आपके जीवन की जर्नी उतनी ही मजेदार रहेगी जितना कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं और दिल को सुकून बहुत देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने अपने कई सारे ब्लॉग्स में हमें बताया है कि आप दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है ना आपसे वो ये है कि ऐसा क्या आपको खास दिखा केवल धर्मशाला में, क्योंकि जाने को आप कहीं भी जा सकते थे, बहुत सारे जगह है, बहुत सारे पहाड़ जैसे कुमाऊं गढ़वाल कहीं भी जा सकते थे, हिमाचल में भी आप डलहौजी चंबा मनाली कहीं भी रह सकते थे, लेकिन धर्मशाला में ही ऐसा क्या आपको दिखा कि आप यहाँ पर आए?
1: देखिए ज्योति जी, मैं इससे पहले धर्मशाला शिफ्ट होने से पहले मैं घूमा सारी जगह, मनाली भी मैं गया, डलहौजी जैसे अभी आपने बात करी, चंबा डलहौजी खजियार में सारा घूमा, लद्दाख भी मैंने कर रखा था
0: जी।
1: बट धर्मशाला एक ऐसी जगह है जो आपको जो खिंचाव धर्मशाला में है, जो सुकून धर्मशाला में मुझे महसूस हुआ वो और जगहों पे नहीं हो पाया। दिल्ली में मैं काफी साल रहा, जन्म मेरा दिल्ली में हुआ
0: जी।
1: बट जब मैं 2020 में धर्मशाला घूमने के लिए आया और उससे पहले कई जगहों पे घूमा तो मेरे को एक कंपैरिजन पता लगा कि कितनी अलग ये जगह है, यहाँ की सादगी लोगों में और यहाँ की वातावरण में जो एक अलग ही महक है और जो बहुत सिंप्लिसिटी है वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो ये मेन कारण था कि मैं 2020 से 21 तक कई बार धर्मशाला आता रहा और उसके बाद फिर मेरा जो सपना था कि चलो मैं धर्मशाला शिफ्ट ही हो जाता हूँ, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली दिल्ली से यहाँ आना 500 किलोमीटर बहुत लंबा सफर होता है, 500 किलोमीटर आना और जाना। उसके बाद मैंने सपना बनाया कि मैं सितंबर में यहाँ पे शिफ्ट हो गया फिर।
0: अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि देखिए ये तो आपका सपना था ठीक है, लेकिन आपके साथ आपकी फैमिली भी थी, तो वो क्या मान रहे थे इस बात को कि वहां से यहाँ शिफ्ट, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं ना, वहां से एक ऐसी जगह पर जहाँ पे थोड़ी सी लाइफ जो है वो स्लो गोइंग है, जब फैमिली को आप लेकर आए तब क्या उनका था कि भाई वो आए आपके साथ में, और जब वो आए कहीं उनको भी आप शायद घूमने फिराने के लिए पहले लेकर आए होंगे ना कि थोड़ा सा देखिए कि कैसी जगह है, तो उन्होंने एग्री किया?
1: शुरू में दिक्कत हुई, पहले मैंने सोचा कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपके साथ पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, दो बेटी है मेरी, छोटे थे बच्चे उस टाइम 2021 में, क्योंकि छोटी बेटी मेरी काफी छोटी थी, 2 साल की थी उस टाइम, तो समझाना मुश्किल था। और फिर मैं इनको घुमाने के लिए लेके आया, इनको मैंने बताया नहीं कि मेरा ऐसा सपना है यहाँ पे शिफ्ट होने का। ज्योति भी नाम है उसके, मेरी वाइफ का ज्योति नाम है, तो उसको लेके आया मैं यहाँ पे बच्चों के साथ में, और कुछ दिन हम यहाँ पे रहे, जैसे एक टूरिस्ट आता है और घूमता है मैक्लोडगंज धर्मशाला कुछ मंदिरों में लेके गया, फिर दोबारा मैं उसको कुछ महीने बाद लाया, 1-2 महीने बाद, और जब लाया दोबारा तब मैंने उसको यहाँ आके अपना बताया कि यार मेरा यहाँ पे शिफ्ट होने का मन है, और मैं जानता हूँ मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को, बड़ी बेटी को मैंने वहां स्कूल में डाल रखा था, छोटी बेटी तो उस टाइम प्ले स्कूल में थी, काफी छोटी थी
0: जी।
1: फिर मैंने अपनी मदर से बात करी, फादर से बात करी, तो सबने यही कहा कि तू बार बार जब वहां जा रहा है तेरे को इतनी अच्छी वो जगह लग गई, तो तेरी आत्मा वहीं बस गई है, तो तू ट्राई क्यों नहीं करता। और ये जब इंसान का कोई सपना होता है अगर वो उसको पूरा नहीं करता तो मुझे लगता है कि जीने का कोई महत्व नहीं रह जाता उस टाइम। अगर मैं वही सपना लेके दिल्ली में रहता डेली मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 2 घंटे के जाम में फंस रहा हूँ, कभी मैं 1.5 घंटा जाम में फंस रहा हूँ, और मेरा ऑफिस मेरे घर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे था। 8 किलोमीटर की अगर बात करूँ, धर्मशाला में पहुंचने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, हद से आधा घंटा, दिल्ली में मैं 2-2 घंटे जाम में फंसा रहता था, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट होता था, ऊपर से जो फ्रस्ट्रेशन होती थी जाम में फंसने की, पॉल्यूशन की, क्राइम की, इन चीजों की, तो मुझे बड़ा एक मतलब अंदर से ये भी रहता था कि मैं मानता हूँ वह सुविधाएं ज्यादा है, मैं मानता हूँ हॉस्पिटल ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है, मॉल्स ज्यादा है, पोर्टर, ये चीजें बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे बहुत ज्यादा है यहाँ के मुकाबले, टैक्सी सर्विस की बात करूँ या रैपिडो की बात करूँ, जैसे कि हर चीज फोन पे हो जाती है, बट मुझे लगता है कि ये चीज ना हमें कहीं ना कहीं इंटरनली इम्पैक्ट भी करती है, क्योंकि इंसान, मेरी जिंदगी वहां ये हो गई थी कि मुझे कुछ खाना भी है अगर तो मैंने अपना फोन लिया और स्विगी से ऑर्डर कर दिया, जोमेटो ऑर्डर कर दिया, टैक्सी बुक करनी है, बाइक बुक करनी है, कहीं सामान भेजना है, हर चीज मेरी फोन से हो रही है, मूवमेंट एक्टिविटी जीरो है, क्योंकि इंसान के पास टाइम ही नहीं है, वो सुबह जा रहा है, घर से 8 बजे निकलता था, मैं रात को 10 बजे घर पहुंचता था, तो इस चीज से मुझे बहुत, मैं उस टाइप का इंसान हूं जो नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करता, जो दिन में खुश रहता है और उसको चाहिए कि एक सुकून भरी जिंदगी, पैसा हर इंसान कमा सकता है और दिल्ली में मैं जानता हूं कि यहां के मुकाबले पैसा बहुत ज्यादा है, मैं शायद बहुत ज्यादा कमा भी लेता, यहां थोड़ा कम कमा पाऊंगा बट ज्यादा जी पाऊंगा, बस यही मैंने अपने घर वालों को समझाया, ज्योति को समझाया पहले, जब ज्योति समझी तो बच्चे तो ऑब्वियस है समझेंगे ही। फिर जब मैंने उनको यहाँ का और दिल्ली का कंपैरिजन दिखाया कि बेटा यहाँ रहो हफ्ता 10 दिन और फिर दिल्ली रहो, जब उन्होंने मुझे खुद कहा कि पापा जमीन आसमान का फर्क है यहाँ और वहां में, तब मैंने ये स्टेप लिया और मैंने यहीं पे यूएल में घर लिया था फर्निश्ड, एक आर्मी रिटायर्ड अंकल का। तो वहां हम रहे 1.5 साल और उसके बाद हम ऐसा हो गया कि हमें दिल्ली जाना मतलब अच्छा ही नहीं लगने लगा, अपने घर सोचो यहीं पे। वो
0: कहने का मतलब ये है कि काफी लंबा स्पैन आपने लिया फैमिली के साथ कि हम मतलब परमानेंट यहाँ शिफ्ट।
1: बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बट अब सब कुछ सही हो गया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं।
0: तो देखिये दोस्तों, इतना आसान नहीं है कहीं से शिफ्ट होना और कहीं और जगह पर जाके बसना। आप जो लोग इस चक्कर में हैं पड़े हुए तो देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से।
1: It's not an easy task, बहुत मुश्किल है।
0: तो हम उस पर हम बाद में आएंगे जरूर कार्यक्रम में, लेकिन पहले ना अब हम एक गीत सुन लेते हैं आपके पसंद का।
1: मेरे को एक गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर सुनता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट का नंबर 1 गाना है ये, मुसाफिर हूँ यारो न घर है न ठिकाना।
0: मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना नाम, ये जो आपने वंडर बंजारा रखा है ना, ये मुसाफिर होना चाहिए था। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद से वो गीत।
1: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, मुसाफिर वैसे हम सभी हैं। अब जिंदगी में आए हैं तो अपने अपने काम करते चलेंगे और फिर एक दिन हम रुखसत भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक तो हमें जीना ही है ना। तो ये जो मुसाफिर हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं? 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। एक स्पेशल पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वंडर बंजारा जी के साथ। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि आपका जो नाम है वो मुसाफिर होना चाहिए था, लेकिन आपको ये कैसे क्लिक किया कि मैं वंडर बंजारा के नाम से कुछ लोगों के सामने जाता हूँ, उनको बताता हूँ, और जो भी कुछ आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस पे हम बाद में आएंगे। पहले आप अपने नाम के बारे में बताएं।
1: मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था सपना कि नाम ऐसा हो कि लोगों को याद हो, मेमोरेबल हो। ये मेरी जिंदगी से जुड़ता हुआ नाम है। वंडर का मतलब होता है कि एक गुमंतु कह सकते हैं, अनोखा कह सकते हैं, और बंजारा होता है कि जिसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। मेरी लाइफ भी जो होती ऐसी ही है, क्योंकि मैं जब घूमने निकलता हूँ तो मेरा कुछ प्री प्लान नहीं रहता। जैसे कि लोग हर चीज लिखते हैं कि भाई आज यहाँ जाना है, ये करना है, इस कैफे में जाना है, तो मेरा होता है कि मैंने बाइक स्टार्ट करी, मैं क्लॉक टावर तक पहुंचा और मैं सोचता हूँ कि अब इस तरफ मुड़ना है कि उस तरफ मुड़ना है, मैकलो जाना है कि पालमपुर साइड। तो मेरा रैंडम लोकेशंस मुझे पसंद है, और मुझे बहुत हिडन लोकेशंस जहां क्राउड बहुत कम होता है मुझे ऐसी जगह पसंद है। वहां मैं 1 घंटा 2 घंटे बैठता हूँ शांति से, कभी रेडियो गुंजन सुन लेता हूँ, तो कभी कुछ मैं अपने कुछ प्लेलिस्ट के मेरे सॉन्ग है पुराने तो वो सुन लेता हूँ। तो बस इसी के ऊपर सोच के मैंने अपना नाम जो है वंडर बंजारा रखा, और मेरे को पसंद है ये नाम क्योंकि ये मेरी लाइफ से बहुत मैच करता है।
0: जब शुरुआत में ना मैंने देखना शुरू किया था और कहीं पर मुझे क्लिक किया कि ये हमारी ही एरिया की कहानी है जो भी आप दिखाते थे, तो उस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ी। ऐसे ही लोग भी जुड़े होंगे, क्योंकि जब अपना एरिया नजर आता है और हम उसको हमेशा ही देख रहे हैं लेकिन हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, नहीं क्योंकि हमें पता है कि सब लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, ये ऐसा एरिया है वैसा, लेकिन आपके लिए वाकई में वो एक अलग सी चीज थी। तो आप उसको अपने कैमरा में शूट करने लगे, धीरे धीरे आप बताने लगे, तो आपने आपको कब लगा कि मैं ये वाला काम भी करूँ?
1: मेरा देखो, मैं वैसे बेसिकली आपको पता ही है कि मैं वेबसाइट डेवलपर, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग पे प्रोफेशनल हूँ। हाँ, तो जब मैं घूमना शुरू करा तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि मुझे लगता है कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शुरू से सपना लेके आ रहा 2021 से कि मैं रील्स बनाऊं या मतलब लोग मुझे जाने, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। बट मैं जब घूमता रहा तो मुझे अंदर से ये चीज हिट करती थी कि लोग भी ये चीज देख सकें। और मुझे कई बार ऐसे मैसेज आते थे जब मैंने अपना चैनल शुरू करा था, 2 साल हुए, तो लोग मुझे कहते थे कि यार आप कितने किस्मत वाले हो, हम धर्मशाला में जन्म लेने के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, कोई दुबई शिफ्ट हो गया, अपने घर वापस नहीं आ पाता, और आप दिल्ली छोड़ के हमारे घर पे हमारी जगहों की वीडियो डाल रहे हो, हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमारी पुरानी यादें ताजा हो रही है कि हम योल देख पा रहे हैं, कोतवाली देख पा रहे हैं। तो ये चीज जब मुझे क्लिक करी तो मुझे लगा कि मेरे को वो सब कुछ उनको दिखाना चाहिए। लोगों की फरमाइश पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। कोई मुझे कहता है कि मुझे भाई बड़ोल देखना है। अच्छा। अभी पीछे एक भाई का मैसेज आया, वो दुबई में है तो श्याम नगर रहते थे, उनको श्याम नगर देखना था, मैंने वीडियो डाली। अच्छा। एक का आया यहाँ जगह आगे है नगरी, तो वो कह रहे कि भाई प्लीज नगरी की वीडियो बनाओ, तो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है मैं नगरी जाके वीडियो। तो बस ये चीजें, मैंने लोगों का जो प्यार देखा धर्मशाला के प्रति, जो यहाँ से चले गए हैं, कईयों के घर वाले यहाँ रहते हैं, माँ बाप यहाँ रहते हैं, कईयों की वाइफ यहाँ रहती है तो वो पति वहाँ जॉब कर रहा है, तो ये चीज मुझे देख के लगा कि मैं अगर वो उनके घर यहाँ पे रहता हूँ तो उनके लिए कुछ कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ कि कुछ आपके ब्लाउज के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे।
1: हाँ।
0: कि अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली मतलब रहने लायक उतना नहीं रह गई है क्योंकि वहां पे पैसा है, लेकिन जिंदगी शायद कम होती चली जा रही है ना, लेकिन अभी भी दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग ऑफेंड भी हुए वहां पर, कुछ उन्होंने लिखा भी कि भाई अब आप चले गए उसका मतलब ये नहीं है कि भाई सारे लोग ही शिफ्ट हो जाएं, और कुछ लोग जो हैं वो इंस्पायर होकर शिफ्ट होना भी चाहते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि आसान नहीं है ये सब कुछ, तो उसको आप फिर कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं?
1: ये इंसान से इंसान पर डिपेंड करता है। देखो इसमें ज्योति जी क्या मेन चीज है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि पैसा वो कमाते हैं दिल्ली में, बट उनका इंटरनली, जैसे पीछे एक मुझे पटियाला से मैसेज आया था एक भैया का, अंकल ही है वो, काफी एज के, अभी 60 साल उनकी उम्र है, इस बात को 2 महीने हो गए, वो कह रहे हैं कि मैंने ये सपना हिमाचल शिफ्ट होने का 40 साल की उम्र में दिखा था बेटा, अब मेरी उम्र 60 साल है, मेरे बच्चे सेट है और मैं अभी सेज में आ गया हूँ कि मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता। तो कई लोग दिल्ली में भी खुश है, ऐसी बात नहीं कि दिल्ली में 90% हो सकता है लोग खुश हो, 10% चाहते हो निकलना। जैसे कि मेरा एक ब्रदर भी है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो उसकी बिजनेस भी है वहां पे, कंपनी है, बट इंटरनली वो चाहता है कि भैया मैं आप जैसी लाइफ जी पाऊं। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे शिफ्ट हो जाओ, बट अगर जो होना चाहता है शिफ्ट, अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली में खुश हो, देखो दिल्ली बुरा नहीं है, मेरा जन्म वहां हुआ, मेरी पढ़ाई वहां हुई, मेरी जन्मभूमि दिल्ली और कर्म भूमि भी कह सकते हो आप दिल्ली है, बट आत्मा यहाँ मिल गई तो मैं यहाँ आ गया। जरूरी नहीं है हर एक को शिफ्ट होना है, बट जिसका सपना है यहाँ शिफ्ट होने का, या हिमाचल में कहीं भी, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहां पहाड़ी इलाके में, अपने सपने पे काम करो और सपने को सपना मत रहने दो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कोविड के टाइम पे कितनी दुनिया चली गई अपने सपनों के साथ। तो बस मैं इसी मोराल पे जीता हूं कि जो मैं सोचता हूं मैं वो करना चाहता हूं, और मैं किसी रिग्रेट के साथ इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। एटलीस्ट एंड टाइम पे मुझे ये पता हो कि मैंने अपने सपने पूरे करे। बस
0: हमने सुना लिए सपने निगाहों में। अगला गीत कौन सा है आपके प्लेलिस्ट?
1: अगला गीत मैं एक बड़ा मेरा एक पसंदीदा सॉन्ग है जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज वो जरूर चलाइए। ये सॉन्ग मैं बहुत सुनता हूँ पहाड़ों पे बैठा अकेला, और बहुत ज्यादा मुझे ये पसंद है।
0: चलिए जिंदगी के सफर में हम आज चले हुए हैं और सर के साथ पंडर बंजारा जी के साथ, तो सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: वाकई में जिंदगी एक बहुत सुहाना सफर है अगर हम इसे जीना सीख लें तो, कि कैसे जीना है। स्पेशल ब्रॉडकास्ट हम आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वंडर बंजारा जी के साथ, मनीष वर्मा जी हैं
1: मनीष
0: ये।
1: वर्मा।
0: अब हम चलेंगे इस बात पर कि जब आप वहां से शिफ्ट हुए
1: जी
0: तो कुछ तो कठिनाइयां आई ही होंगी, क्योंकि फैमिली आपकी मान गई वो एक अलग बात है, लेकिन जब रियलिटी पे कहीं रहना होता है, कुछ करना होता है, तो क्या क्या वो कठिनाइयां थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही आपको प्रॉब्लम्स थी, है ना, लेकिन यहाँ पर आकर के भी आई होंगी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे।
1: बिल्कुल। देखिए, मैंने अपना माइंडसेट, पहली चीज है कि मैंने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है हर जगह एक ऐसी नहीं होती कि वहां पे सब कुछ ही पॉजिटिव हो। कहीं भी मैं चला जाऊं, चाहे मैं स्विट्जरलैंड भी क्यों ना चला जाऊं, तो यहाँ पे आने के बाद जब पहली चीज थी मकान ढूंढना, सबसे मुश्किल चीज जो मुझे आज तक की लगी वो धर्मशाला में रेंट पे अपने सपनों का घर ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक आउटसाइडर यहाँ पे मकान जमीन नहीं ले सकता। कोई ऑब्लिगेशन होती है ऐसी जो हिमाचल का इंसान ही लैंड ले सकता है। तो रेंट पे अच्छा घर मैंने ढूंढा, और पहला जो मैंने स्टेप लिया वो इनिशिएटिव ये लिया कि मैं घर अपना जो है यहाँ पे फर्निश्ड लूंगा। अपना सामान लेके नहीं आता कि इन केस अगर बच्चों का मन नहीं लगा। उस टाइम अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू हो जाती है और बच्चे छोटे थे, तो मुझे लगा ये भी एक बार मन में डर था कि छोटी बच्ची को यार ठंड ना लगे, क्योंकि दिल्ली के एटमोसफेयर और यहाँ के एटमोसफेयर में जमीन आसमान का फर्क है।
0: जी
1: तो पहली चीज है कोजी सा अच्छा सा घर ढूंढना, जो मैंने ढूंढा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को पता लगा यहाँ पे स्कूल्स कैसे हैं, स्कूल्स देखे, बच्चों को स्कूल में डाला। फिर तीन तरह के बोर्ड हैं यहाँ पे, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई है, एचपी बोर्ड है, तो बच्चों को स्कूल में डाला। फिर मैंने हॉस्पिटल्स पता करे, उसके बाद धीरे धीरे अपना सेटअप करा। अच्छी बात यह है कि मैं वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करता था, तो मेरे को मेन चीज थी कि इंटरनेट अच्छा चाहिए। इंटरनेट यहाँ पे अच्छा चलता है। बहुत सारे मेरे को लोग सवाल पूछते हैं कि यार धर्मशाला में इंटरनेट चलता भी है, क्योंकि आउट लोकेशन है, रिमोट लोकेशन है। तो देखो यार, इंटरनेट यहाँ पे जियो और एयरटेल बहुत अच्छा चलता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, फाइबर डली हुई है, और जहां पे फाइबर नहीं है वहां पे एयर फाइबर अवेलेबल है।
0: वैसे आपने पार्ट्स पार्ट्स में अपने व्लॉग्स में भी कभी कभी यूट्यूब
1: हाँ
0: पर,
1: जी
0: कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टा पर ये सब कुछ बताया
1: बताया
0: हुआ
1: है
0: है,
1: जी।
0: लेकिन क्या होता है ना, वो एक मतलब पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते ना लोग कभी, तो इसलिए हम दोबारा से आपसे यहाँ से जानना चाह रहे हैं कि
1: जी
0: एक फुल पूरे प्रोग्राम में, फुल फ्लैश में लोगों को ये सब कुछ सुनने को मिले कि वाकई में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान होता है, मुश्किलें हर जगह होती
1: बहुत
0: हैं,
1: मुश्किल है।
0: है ना। पर हाँ, जब हम रहना शुरू कर देते हैं कहीं पर तो फिर चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती
1: आप
0: हैं।
1: माइंडसेट बना लेते हैं तो उसके बाद चीजें सॉर्ट हो जाती है अपने आप। जी
0: और देखिए, आप तो अपना माइक उठा करके चले जाते हैं घर से,
1: जी
0: है ना, और आपने कहा कि हमें तो जी मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने आज कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो घर वालों को भी नहीं पता होता होगा कि
1: नहीं, घर
0: आप
1: वालों को मैं ये बता देता हूँ कि भाई वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, कितना ही बता पाता हूँ, नाम एग्जैक्ट नहीं पता होता मुझे भी और घर वालों को भी।
0: तो आपने जैसा कहा कि आप पहाड़ों से बैठ करके अपना वर्क, बाहर से वर्क करते हैं या वर्क फ्रॉम होम कह लें उसको,
1: जी
0: तो उसमें भी तो कुछ चुनौतियां आती होंगी। जैसे आपने कहा कि
1: बिल्कुल
0: नेट मुझे मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अचानक से बारिश शुरू हो गई, है ना, तो तब नेट वैसा रहता है क्या?
1: वही मेन चीज है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। ये सवाल थोड़ा सा आपने जो पूछा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो, हमेशा एक एटमोसफेयर नहीं रहता भाई कहीं पे भी, धर्मशाला में खासकर, कि यहाँ पे बिल्कुल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कई बार मेरे से मेरे फॉलोअर कई बार के रोज के 10 मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि अगले महीने कैसा मौसम होने वाला है। तो ये बहुत मुश्किल है यार प्रिडिक्शन, अगले महीने की बात।

0: क्या मैं अगले 1 घंटे बाद नहीं बता सकता, सर्दियां हो गर्मियां हो बारिशें हो, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है।
1: इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान।
0: छतरी यहाँ पे आपको रखनी है अपने साथ हमेशा, 12 महीने या बारिशों का कुछ नहीं पता। मेरी गाड़ी में, मेरे घर पे, मेरी बाइक पे, मेरे बैग में हमेशा अम्ब्रेला और पोंचू यहाँ पे जरूर रहता है। और नेट की बात करूं, अगर मैं कहीं पहाड़ों पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 सिम होती है, अगर जियो नहीं चलती तो एयरटेल चल जाता है, ऐसा होता कई बार।
1: अच्छा,
0: तो काम हो जाता है। बट कोशिश मैं ये करता हूँ कि जब बारिशों का मौसम होता है कार से ट्रेवल करना ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि बारिश में ना बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ आप बाइक नहीं चला सकते। और बारिश भी यहाँ पे ऐसी होती है कि छतरी के नीचे भी इंसान पूरा गीला हो जाएगा, टेढ़ी बारिश होती है। तो ये मेन मेरे को यहाँ पे वो लगता है कि थोड़ा
1: तो आपने कहा 2 सिम रखता हूँ, मेरा कंसर्न ज्यादा ये था कि चलो काम आप कह रहे हो जाता है, हमें फैमिली के साथ भी कॉन्टेक्ट रखना जरूरी होता है ना, कि मैं यहाँ पे किन हो गया हूँ तो अभी
0: नहीं, मैं कॉल पे ज्योति से कनेक्ट रहता हूँ कि भाई यहाँ पीछे मेरी कई रील्स आपने देखी होगी, एक बार तूफान में मैं खरोता में फंस गया था, तो होता है, हर चीज दोनों तरफ देखना होता है। और मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो अपने आप ही सब कुछ देखना, कहीं अगर फंसता हूँ तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है मेरे साथ। कई लोग मुझे कहते हैं कि सोलो ट्रैवल डिफिकल्ट है,
1: तो सोलो ट्रैवल की बात आपने की ना
0: जी,
1: तो मैं भी उसी पर आना चाह रही थी कि जो सोलो ट्रैवल जैसे आपने बोला कि आसान है, जब शुरुआत में आप आए और आपको लगा कि कुछ लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, तो आपने एक बाइक राइडिंग का शायद कुछ ग्रुप सा बनाना चाहा था, और मुझे याद है कि उसमें पहली बार मैं भी गई थी, शायद वो पहला ही वो था, है ना,
0: एक ग्रुप टूर हुआ था।
1: हाँ, एक ग्रुप टूर हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा शायद वो कंटिन्यू रहेगा, बट समाओ मुझे नहीं पता किस वजह से वो नहीं हो पाया। उसके पीछे की वजह बताएं आप लोगों को, क्योंकि उसके साथ बहुत लोग जुड़ना चाह रहे थे।
0: हाँ, मेन चीज क्या है कि मैं चाहता था कि एक बहुत अच्छा ग्रुप बने यहाँ पे और काफी लोग जुड़े, बट मेन कंसर्न मेरे को ये लगा कि लोगों को टाइमिंग का बड़ा इशू रहा, कि मैं जैसे मैं एक अर्ली बर्ड हूँ, मेरे को आप बोलोगे मैं 4 बजे, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, मतलब अगर आपने आज जैसे मुझे बुलाया 3 बजे तो मैं 2:45 ही लगभग आ गया था। तो हर इंसान का वो शेड्यूल नहीं होता, तो कई बार लोग, मैं जैसे 8 बजे बोलता था कि भाई हमारी दिल्ली में मैंने काफी सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, कफीरा राइडर्स करके भी है एक, वो तो वहां टाइमिंग एक फिक्स होता है कि 8 बजे फ्लैग ऑफ हो जाएगा और हम निकल जाएंगे, हद से 10 मिनट वेट करते थे। यहाँ मैंने कई बार आधा घंटा वेट करा, लोग आ ही नहीं रहे, मेरे को एक दिन पहले बोल दिया कि हम आएंगे, जब 15 लोगों ने हाँ बोल दी तो 3 लोग आ रहे हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं चीज ना एक अजीब सी लगी। और दूसरी बात, जब मैं बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आपने हेलमेट और एटलीस्ट अपने ग्लव्स वगैरह पहन के आना है, किसी के साथ मिस हैपनिंग होगी तो जो एडमिन ऑफ द ग्रुप होता है वो जिम्मेवार होता है। तो इस चीज का भी मुझे डर था कि भगवान ना करे किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग है। पीछे आपने देखा होगा रिद्धिमा जो एक लड़की एक्सीडेंट हो गया था, तो वो भी ग्रुप के साथ थी, तो ये एक डर जो रहता है। और हम पहाड़ों पे बाइक चला रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि दूसरे इंसान की एक्सपर्टीज क्या है। सामने एक लड़का, कई बार हिमालय लेके भी आए लोग, और वो बिल्कुल एक न्यूबीज टाइप होते हैं, जैसे बच्चों में जोश होता है भगाने का, वो भगा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो वो मेरे को डर लगता था कि उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। तो ये सब सोचते हुए, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, तो जब मैंने देखा कि एक इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, एक उसमें, कोई ऑफ रोड करना चाहता है तो कोई ऑन रोड, तो मैंने इस चीज को देखते हुए उस चीज को अभी पोस्टपोन कर दिया। मेरे माइंड में ये प्लान है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, डेट कंफर्म नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े ग्रुप में वो एक प्रोफेशनल राइडर हो, कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो सामने वाले की जिंदगी की भी, अपनी भी, क्योंकि हमारे पीछे से हमारे माँ बाप जो है वो वेट कर रहे हैं घर पे। ये मेरे को बहुत मेन चीज है कि आपकी जिंदगी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी चोट बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट मैं दूसरे इंसान मेरे सामने किसी को लगेगी तो मैं उसके घर वालों का जवाब नहीं दे सकता। ये मेरे को मेन चीज है। हम लद्दाख भी करते हैं, मैं, मेरा ब्रदर और एक चंडीगढ़ का फ्रेंड है वो, तो हम बहुत पैक होके, मतलब पूरा अपना राइडिंग गियर सारा मेरे पास, गियर्स का पूरा सेटअप है अलमीरा भर के, हम सब कुछ पैक होके चलते हैं, गियर से लेके हाइड्रेशन पैक से लेके जो राइडिंग बूट्स हैं, अच्छे हेलमेट वगैरह लगा के करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पल्स ऑक्सीमीटर तक होता है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि इस लेवल के राइड हो तो मैं एडमिन बनने को तैयार हूँ, बट लो लेवल पे बहुत मुश्किल, ये मेन चीज है।
1: हमने उसमें कुछ ये भी देखा कि लोगों को ये लगा कि अच्छा हम इस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हमने ये तो शायद
0: देखी हुई है,
1: तो वो बीच में से स्किप कर जाते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है वो अगर 5 लोगों का होगा तो आते आते वापस दो या 3 लोगों का ही रहता है।
0: गलत होता है, क्योंकि आपने जहां से शुरू करा है ना वहां पे आगे आप, उसके बाद आपको भले 10 किलोमीटर फालतू जाना पड़े, बट साथ में राइडर्स के जाओ, साथ में आओ, तो एक चेन बनी रहती है, खुशी मिलती है कि हम ग्रुप के साथ चल रहे हैं। तो ये चीज देख के मुझे ज्योति थोड़ा सा ना वो हुआ कि मैं सोलो ट्रैवलर ही बेटर हूँ, क्योंकि सोलो ट्रैवल में ना आपको कोई टेंशन नहीं है, आप दुनिया घूमो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और कोई बाउंडेशन नहीं,
1: किसी
0: है,
1: का इंतजार नहीं,
0: इंतजार नहीं करना।
1: तो फैमिली टाइम फिर कब देते हो?
0: मैंने पूरा एक रोड मैप टाइप बना रखा है। सैटरडे संडे मैं ऑफ रखता हूँ अपनी जो कंपनी है, और सैटरडे मेरे फैमिली का रहता है, जहाँ बच्चों का या वाइफ का मन होता है। तो पहले से ही फ्राइडे को बता रहे थे कि पापा हमारा आज पालमपुर साइंस सेंटर जाने का मन है, तो सैटरडे हम वहां पहुंच जाते हैं। संडे पूरा मेरा है, संडे मैं एक बंजारा हूँ, मैं कहीं भी निकल जाता हूँ, ना जाने का टाइम पता ना आने का। तो इस तरीके से मैंने फैमिली का भी, बच्चों की पढ़ाई भी, अभी पेपर चल रहे हैं
1: जी।
0: तो सब कुछ सिस्टमेटिक मैंने कर रखा है कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये अपनी लाइफ जी रहा और हमें यहाँ ले आया, सबको मैं इक्वल टाइम।
1: हाँ, बंजारा जी का के पसंद से अगला गीत।
0: हाँ जी, मैं एक अगला गीत आपको बताना चाहूंगा, और बहुत ही मेरे को ये पसंद है गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये साथ के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे फैमिली की, तो ये साथ के ऊपर ही एक गीत है जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के साथ बैठ के सुनता हूँ, कि बच्चे तो छोटे हैं, पुराने गाने नहीं सुनते, और मैं और मेरी वाइफ सुनते हैं।
1: चलिए पहले सुनते हैं ये गीत, फिर आते हैं अपनी बातचीत पर आगे वापस।

0: तो जिंदगी का साथ निभाते निभाते हम भी यहाँ तक पहुंच गए हैं और स्पेशल बातचीत आज हम कर रहे हैं बंडर बंजारा जी के साथ, मुनीश वर्मा। और सर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ तो बंडर बंजारा ट्रेवलिंग वाला अंदाज है आपका और दूसरी तरफ आप SEO जैसी टेक्निकल चीज को भी हैंडल करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना और इसके शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपका क्या मतलब मोटिव है, क्योंकि अब मुझे ये भी पता है कि आप कुछ सिखा भी रहे हैं लोगों
1: जी,
0: को।
1: जी मेन चीज क्या है ज्योति, देखो ट्रैवल अपनी जगह है, घूमना मेरा एक शौक है, एक पैशन है, बट प्राइमरी जो मेरा जो काम है वो मेरा, मैं SEO एक्सपर्ट हूँ। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके द्वारा हम कीवर्ड्स को गूगल पे रैंक करते हैं, जैसे कि कुछ टाइप करते हैं आप तो जो क्वेरी शो होती है। 2010 में मैंने SEO करना शुरू करा था और 2012 के बाद मैंने जॉब करी, फिर 15 तक जॉब करी, 15 में मैंने अपनी कंपनी सेटअप कर ली थी। तो हमेशा से मेरा ये सपना रहा कि मैं कुछ बच्चों को सिखा पाऊं जो सीखना चाहते हैं मेरी स्किल्स, जो सीखना चाहते हैं जो मैं करता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे कीवर्ड्स गूगल पे रैंक कर चुका हूं, काफी सारे मैंने इंटर्न्स को ट्रेन करा और मैं MNC में जॉब करता था दिल्ली में, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट कंपनी से MNC से मेरी शुरुआत हुई थी। तो काफी सारे एग्जीक्यूटिव मेरे पास भी काम करते हैं, दिल्ली में मेरी कंपनियां। तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल बनाया, पहले मैंने कुछ वीडियो वंडर बंजारा चैनल पर डाली थी, बट मैंने पूरा डेडिकेटेड चैनल अलग ही डिजिटल मनीष वर्मा के नाम से यूट्यूब पे अलग कर दिया।
0: अच्छा।
1: उसमें सारी वीडियोस SEO की है, अभी वेबसाइट डेवलपमेंट की वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कोर्स बना रहा हूँ पूरा SEO की, तकरीबन 65 वीडियोस मैंने उसमें पोस्ट कर दिए हैं।
0: अच्छा।
1: 65 वीडियोस स्टेप बाय स्टेप, और पर वीडियो अगर देखे तो 1 घंटे की है, मतलब 65 घंटे का वो कोर्स है। मेरा सपना उस कोर्स को लेके ये है कि जो बच्चे, देखो मैंने हिमाचल के अंदर रिमोट से रिमोट लोकेशन देखी है और मैंने लोगों के अंदर हिमाचल में ये जज्बा देखा कि वो सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई खेती ही करना चाहता है, जिसका अपना शौक है, जिसका अपना घर का वो है वो करे, बट कई बच्चे ऐसे हैं, आजकल जेन जी का जमाना है और लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक लैपटॉप हो, हम भी वर्क फ्रॉम माउंटेन करें। तो उनके लिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स एक जो है उस पे अवेलेबल कराया कि बच्चे सीखें और अपने परिवार के साथ रह सकें, क्योंकि ज्यादातर हिमाचल से लोग जो दिल्ली जाते हैं वो अच्छी सैलरीज के लिए जाते हैं, ठीक है, जाते इसलिए ही हैं और अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, उनका दिल यहीं बसा हुआ होता है, मैंने ये देखा।
0: हाँ जी।
1: तो वो इस कोर्स के माध्यम से मेरी जो स्किल मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ वो स्किल सीखें, वो भी काम करें, मार्केट में बहुत काम है। मैंने उसके अंदर SEO का अभी कोर्स पूरा अपलोड कर दिया है, कुछ वीडियोज अभी रह रही है, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स आएगा जो मेरी स्किल्स है, सोशल मीडिया का उसमें कोर्स आएगा, वीडियो एडिटिंग में कर लेता हूँ, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, क्लाइंट हैंडलिंग, ये सारी स्किल्स मेरे को तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं पूरा ओपनली शेयर करने वाला हूँ अपने उस चैनल पे, डिजिटल मनीष वर्मा के नाम से चैनल है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वहां जाके आप पूरी वीडियोस देख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो अवेलेबल हूँ मैं, कमेंट्स में सबके जवाब देता हूँ।
0: तो पहले मुझे बीच में ये भी पता लगा था कि वो पेड भी था शायद।
1: हाँ, मेंटरशिप पेड मैंने रखी थी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम आपसे डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, जब आप वीडियोस में इतना अच्छा सिखा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमें डायरेक्टली सिखाएं अपना लाइफ पे और आपकी जो भी फीस आप रखें। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं पेड मेंटरशिप का, बट उसमें से 20 बच्चों ने इतना ज्यादा मुझे वो करा तो मैंने वो मेंटरशिप शुरू करी और 20 बच्चों को मैंने सिखाया अभी, और वो 20 बच्चे आज काफी बच्चों को क्लाइंट भी मिल गए हैं, और काफी बच्चे, देखो वो मेंटरशिप 3 महीने ही खत्म हो चुकी है, बट मैंने उनसे ये कहा था कि बेटा एज अ ब्रदर, एज अ बड़ा भाई, मैं आपको कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। आज तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर क्लाइंट मिल गया, वो ये सवाल पूछ रहा है क्या बोले हम। तो अगर किसी की हेल्प कर देंगे तो आपका कुछ नहीं घिस जाता, और जितना आप ज्ञान बांटेंगे ना उतना आपकी किताबों में से धूल हटती है। हाँ। ये सच्चाई है, तो बस ये मेन चीज है।
0: तो अब एक चीज है, हमें ना लाइफ में शांति चाहिए, है ना, तो क्या हमारे जो पहाड़ है इसकी शांति ने आपकी ये जो क्रिएटिविटी है SEO वाली या फिर आपकी ब्लॉगिंग वाली, इसको और बेहतर बनाने में मदद की है?
1: मेरे को फर्क लगा है, पिछले अगर मैं 4-5 साल की बात करूं तो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने से मेरी क्रिएटिविटी इम्प्रूव ही हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है ज्योति, कि सोलो ट्रेवल करने से और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने से ना आपकी इमेजिनेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब आप शहर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आप एक ऐसा सफोकेशन मुझे फील होती थी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड अलग अलग हो सकता है, कभी हॉर्न की आवाज, कभी आप कोई ऐसी न्यूज सुनते हो कि आपका दिमाग वहां लग जाता है, कभी आप बाहर ट्रैफिक में फंस जाते हो, कभी आपको ऐसा मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि जितना ज्यादा शहर में सुविधाएं हैं उतने खर्चे ज्यादा है, मैंने ये चीज देखी, और खर्चों के चक्कर में इंसान भागता ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमाना पड़ता है, तो यहाँ पर खर्चे उस लेवल से नहीं है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे उतना शोर नहीं है, उतना पोल्यूशन नहीं है, बीमारियां भी उतनी नहीं है, तो मेरी क्रिएटिविटी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है पहले से, और मैं अब ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करने लगा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर बन गया हूँ। मैं किसी जगह पे जाता हूँ, जैसे मैं आज नोरबलिंगा इंस्टीट्यूट गया, वहां काफी देर बैठा, मैंने लोगों को देखा, कोई चेहरे पे किसी के खुशी थी, कोई उदास था, कोई सोच में था, तो अब चीजों को जब आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो एक अलग ही खुशी मिलती है, आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, आप सोचते हो कि लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, तो ये मेरे में फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं सोचने लगा हूं अब कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं हिमाचल के लिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों ने कूड़ा फेंक रखा होता है, तो मैं कई बार अपने बैग में भी उसको उठा लेता हूं और कोशिश करता हूं दिखा के कि कोई ऐसा ना करे, आने वाले टाइम पे ऐसा ना करे। तो ये चीजें बहुत, मैंने दिल्ली में नहीं करी ये चीजें, क्योंकि मैं इतना उस टाइम चहल पहल में फंसा हुआ था कि टाइम ही नहीं मिलता था भाग दौड़ में, बट ये चीजें बेटर हुई हैं जो आपने पूछा है।
0: ठीक है, अब ना एक बात ये है कि जैसे सोलो ट्रैवल जो आपने बात की थी, कुछ लोग करते हैं, जैसे आप भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है मेल्स की बात अलग है, फीमेल्स की बात अलग है, तो मैं फीमेल्स पे जाना चाहूंगी। अगर कुछ लोग करते हैं, अभी भी कुछ फीमेल्स हैं जो करती हैं और अपने व्लॉग्स डालती हैं, लेकिन उनके लिए कोई, अगर आप कोई टिप देना चाहें उनकी सिक्योरिटी वाइज या कुछ इस तरह से, कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो आप शेयर कर सकते।
1: मैं देखो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक कोलकाता की लड़की यहाँ पे अभी आई थी, मैं नाम नहीं शेयर करना चाहूंगा, तो मैंने एक रोड की वीडियो डाली हुई थी जो कि नगरी से सुकेरी होके, एक सुकेरी जगह पड़ती है, पालमपुर सौरभ वन विहार निकलती है, जंगल का इलाका है, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ की जगह है, मैंने कहा ये बेटा इस वाली जगह, छोटी एज की थी, सोलो ट्रैवल कर रही थी कि मैं कोलकाता से एक महीने के लिए आई हूँ, तो मैंने उनको कहा भी कि ये वाली रोड है, बट आपने, मैंने साथ में ये भी उनको डिस्क्लेमर दे दिया कि अगर आप जाएंगे तो पहले बताओ जाओगे किस पे। उसने कहा मैं ड्राइव करके जाऊंगी, फिर मैंने उससे कहा टाइमिंग क्या है, आप सोलो ट्रैवल करोगे, तो उसने कहा मैं दिन में जाऊंगी, तो मैंने उसको डिस्क्लेमर ये दिया कि पहली चीज अगर आप जाओगे तो आपने बहुत तेज बारिश में नहीं जाना, शाम के टाइम नहीं जाना, और अपने साथ किसी को आपने लोकेशन शेयर कर देनी है कि कुछ भी भगवान, देखो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड का नहीं पता होता, बारिश है कई बार डंगा बैठा होता है आपने देखा है, तो हमें बारिश में रोड का पता नहीं होता आगे गिरी हुई है पीछे भी कुछ हुए रात से, तो ये मेन चीज है कि सचेत करना भी जरूरी है। और सोलो ट्रैवल जो है वो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग हो, लड़कों के लिए अलग हो, नहीं, आप उस लेवल के ब्रेव होने चाहिए और आपको हर चीज टैगल करनी आनी चाहिए, और कोशिश करो पहाड़ों पे शाम ढलने के बाद अंधेरे में, लोग मैंने देखा अक्सर ट्रैक पे निकल जाते हैं, तो जानवरों का खतरा भी होता है, और जानवरों से अगर आप एनकाउंटर, जैसे मेरे बैग के अंदर एक विसल रहती है हमेशा, अगर मैं शाम के टाइम में अकेला घूम रहा हूँ तो मैं जंगल में विसल बजाता हुआ चलता हूँ, क्योंकि अगर आप भालू से एनकाउंटर कर देते हो, क्योंकि देखो जानवर का कोई मकसद नहीं है आपको मारने का, जानवर कभी दिन में नीचे नहीं आता या जानबूझ के हमला नहीं करता, आमने सामने जब टक्कर हो जाएगी तो वो हमला करेगा, उसको नहीं पता ना, उसका माइंडसेट आपकी तरह नहीं है, सेम शेर चीते के साथ भी, तेंदुए के साथ भी ऐसा होता है, तो अगर आप शोर मचाते चलोगे तो जानवर को पता होगा कि आप कोई इंसान वहां से आ रहा है, तो शाम के टाइम में ट्रैवल अवॉइड करता हूँ, दिन ढलने के साथ ही मैं घर आ जाता हूँ, ये मैं लड़कियों के लिए भी बोलता हूँ कि वो भी अगर ऐसा करेंगी तो सेफ्टी रहेगी, बस मेन चीज ये है।
0: अब एक गीत होगा या रैपिड फायर होगा?
1: अगला गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है उन बच्चों के लिए और आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी, यूं ही चला चल रहा ही, स्वदेश फिल्म का, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है, और जितना आप चलेंगे और जितना अपने ऊपर से धूल हटाएंगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जी

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ दोस्तों आप लोग भी बने हुए हैं और स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हम मंडल बंजारा जी के साथ जो कि है मनीष वर्मा जी। मनीष और मनीष में मुझे बार बार
1: सब मेरा नाम बंजारा के नाम से ही सेव करते हैं अपने फोन के अंदर। हाँ। मैंने ये चीज देखी है, पूछी भी है जी। हाँ।
0: अब देखिए आपके पास दो बच्चियां भी हैं, बेटियां हैं ना आपकी, बहुत प्यारी प्यारी सी। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या उनके लिए क्या कैसा सोचते हैं कि वो नौकरी में जाएं या आप ही की तरह कुछ इंडिपेंडेंट कुछ करें?
1: बिल्कुल, मैं मेन चीज ये है कि देखो मैंने बच्चों के ऊपर कभी भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए और बच्चे का जो अपना मन है, जैसे मेरी छोटी बिटिया को आर्ट्स का बहुत शौक है, वो मेरी फोटो बनाएगी, बड़ी अच्छी बना रहती है इस एज में, 7 साल 8 साल उम्र है तो अच्छी, मतलब उसकी वो आर्ट्स में जाना चाहेगी तो मैं उसको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा कि तू आईटी फील्ड में जा बेटा, नहीं। बड़ी बेटी कंप्यूटर में बहुत तेज है और मेरा एक लैपटॉप पुराना उसके पास है, वो उस पर प्रैक्टिस करती रहती है। तो बच्चे का जिस चीज में मन होगा, मेरा हमेशा से एक सपना ज्योति रहा था, जब मैंने जॉब करी थी तो मैंने पहले दिन ही बॉस को बोल दिया था, कोई एम्प्लॉई इंटरव्यू क्लियर होते ही बॉस को नहीं बोलता, मैं आपको ये वाक्य ही बताता हूँ। पहले दिन ही मैंने अपने अनुज दुरेजा नाम था उनका, और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 3 साल से ऊपर से जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज सोच रखी थी कि जिंदगी भर जॉब भले ही कितना पैसा मिले, उस टाइम सैलरी जितनी होती थी अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला, बट 3 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ी और कोई एम्प्लॉई पहले, मतलब साल के पहले दिन जॉब नहीं छोड़ता। मैंने पहले दिन रेजिग्नेशन दिया था। इसके पीछे कहानी ये थी कि उस टाइम यूट्यूब बड़ा चलन में था, नया नया 2012 की बात है, थोड़ा सा ये आंसर लंबा हो जाएगा, मैं आपको दे सकता हूँ,
0: कोई नहीं।
1: तो एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें एक राजा होता है एक देश में, तो उसको जो बर्ड्स होती हैं वो पकड़ के उड़ाने का शौक था, तो वो बड़े सारे तरह के पक्षी पकड़ता था, उड़ा देता था और देखता था कौन ऊपर जा रहा है। तो एक पक्षी उसने एक दिन उड़ाया तो वो पक्षी उड़ता और गोल गोल घूम के एक पेड़ की टहनी पे बैठ जाता। वो कह रहा मैं इतने सालों से पक्षी पकड़ रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, बट वो पक्षी क्यों नहीं उड़ रहा। उसने एक्सपर्ट्स बुलाए, गाँव के एक्सपर्ट आए, सबने कोशिश करी, वो पक्षी थोड़ी देर घूमता फिर बैठ जाता। एक गांव का एक बिल्कुल लकड़हारा जो होता है, बिल्कुल नॉर्मल बंदा, कहता मैं 10 मिनट में ठीक कर दूंगा ये चीज राजा जी। राजा कहता तू ये कर और मैं तेरे को बड़ा पैसा दूंगा। वो 10 मिनट में वो चीज ठीक कर देता है और पक्षी बड़ा ऊपर उड़ जाता है। वो सोचो उसने ऐसा क्या करा होगा उस इंसान ने जो एक्सपर्ट नहीं कर पाए। आप जवाब दो सोच के, या आपके लिए एक क्वेश्चन है जी।
0: आइडिया नहीं है मुझे।
1: उसने उस टहनी को काट दिया। तो हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं जॉब के अंदर, हमें पता है कि हमने सुबह ऑफिस पहुंचना है, हमारे मीटर डाउन है, सैलरी मिल रही है, पंच करना है, शाम को चले जाना है। तो मैंने अपने बॉस को यही कहानी सुनाई, मेरे बॉस की आंखों से आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा यार मैंने तेरा ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो 1 तारीख को जॉब छोड़ रहा है। और ये कहानी सुनने के बाद 31 तारीख को मैंने ये कहानी देखी थी, 1 तारीख को मैंने डिजाइन दिया और अपना काम करा, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चला गया था, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता था। और जब तक इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता उसको अपनी वैल्यू नहीं पता होती।
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने जॉब छोड़ी, अपना काम करा, बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी मीटिंग्स करी, क्योंकि जॉब में एक लिमिटेड अच्छी सैलरी मिल रही थी। दो हजार 2012 में मेरी शादी हुई तो मुझे ये था कि यार बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, बट करते करते करते करते भगवान अपने अवस्था बनाता है अगर आप मेहनत करते हैं तो।
0: और देखिए वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यहाँ पर आना है, जब आपने अपने लिए खुद डिसाइड किया है और आपकी फैमिली आपके साथ साथ में साथ दे रही है, अब जो बच्चे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ अपना होगा ना। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आ रहे हैं कि उनके भी अपने सपने होते हैं, तो उन्हें भी अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए। हाँ, एजुकेशन जरूरी है, वो उनको बेसिक तो लेनी ही है, लेकिन उसके बाद उनका जहाँ पर मन है वो वहां जाएं और आप लोग सपोर्ट करें, उसमें थोड़ा गाइड कर सकते हैं।
1: एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इंसान सब कुछ अगर आप अपना सपना ही पूरा नहीं कर पाओगे तो मेरे को लगता है कि वर्थ इट नहीं रहा जीना। तो मुझे

में सेट हो जाए। तो मेरा यह एक एम है बस, मेरा और कोई मकसद नहीं है। काम चल रहा है, जिंदगी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बट अगर कोई आज से मेरा कोर्स शुरू करता है जो डिजिटल मनी चुराना में डाल रहा हूँ और सीख के क्लाइंट उठा लेता है, पैसा कमा लेता है, अपना सपना पूरा कर लेता है, और आज से 20 साल बाद भी कहेगा कि यार कि यार कि यार कि यार

0: मेरे तो दिमाग के ऊपर ऊपर से निकल जा रहा था कि
1: कुछ मुश्किल
0: क्या
1: नहीं
0: चीज है,
1: कुछ मुश्किल
0: तो मैं भी देखती हूँ शायद हो सकता है मैं भी आपसे जुड़ूं और इस चीज को सीखूं, सिर्फ एक नॉलेज गेन करने
1: एक घंटे की वीडियो अगर आप आधा घंटा देखोगे और आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है।
0: क्योंकि जिंदगी में हमेशा, जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि निरंतरता जरूरी है, तो वो मतलब कुछ ना कुछ आप रोज सीखते रहिए, कुछ नया आप जरूर सीखिए,
1: बहुत जरूरी है
0: ना, बहुत जरूरी है। चलिए रैपिड फायर ले लेते हैं एक फटाफट से, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। दिल्ली के छोले भटूरे या धर्मशाला के मोमो सिड्डू या फिर आपकी पसंद से जो भी?
1: मेरे को धर्मशाला के मोमो और सिड्डू अच्छे लगते हैं और स्पेशली कांगड़ी धाम।
0: ठीक है, हाँ यस, मेरे क्वेश्चन गलत हो गया। पहाड़ों की तेज बारिश में ब्लॉगिंग करना या फिर कमरे में बैठ करके SEO की कोडिंग या फिर स्ट्रेटजी?
1: पहाड़ों की तेज बारिश और बादलों में मुझे काम करने में बहुत मजा आता है।
0: अब अगला डेस्टिनेशन जो वंडर बंजारा के दिल के बहुत करीब है लेकिन वहां पर अभी तक आप नहीं गए?
1: मैं शानगढ़ जाना चाहूंगा, सिसु के पास मनाली में शानगढ़ जगह है, वहां जाने का बड़ा मन है, अभी तक जा नहीं पाया, वहां जाऊंगा।
0: राजगुंदा वगैरह देखा वगैरह देखा वगैरह देखा वगैरह देखा

0: और सबसे बड़ी बात, वहां हमेशा ठंड रहती है, कभी भी गर्म होता नहीं मौसम, कंबल और रजाई हमेशा निकले रहते हैं, तो मजा अलग है।
1: तो मैंने इसलिए आपको कहा कि बताइए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि हाँ। देखिए अब इतने साल ना हम देहरादून में रह के आए, लेकिन पास ही में हरिद्वार था, कभी वहां नहीं विजिट कर पाए, किसी भी वजह से हमारे माता पिता की व्यस्तताएं वैसी थी, हम तो बच्चे थे छोटे। और अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं जैसे कि हम निकले,
0: मुझे भी कहते हैं, मुझे कहते हैं यहाँ के लोकल्स की यार तू पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, हमने उन जगहों के नाम नहीं सुने, हमारा जन्म यहाँ हुआ है।
1: हाँ।
0: तो निकलना चाहिए, घूमना चाहिए धर्मशाला में। इतनी देखो गूगल मैप पे जो जगहें दिखती हैं ज्योति जी, वो अलग हैं, और जो सच में इतनी हिडन स्पॉट है यहाँ पे, मैं डाल रहा हूँ उनकी वीडियोस, आप जब वहां जाओगे तो आप कहोगे यार मतलब ये क्या जगह है। बाकी मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपनी नजरों से देख पा रहा हूँ दुनिया भी वो चीजों को देख पाए, तो मुझे खुशी मिलती है कि इतना अच्छा आपने गांव दिखाया, इतने अच्छे लोग दिखाए, तो ये मेन चीज है बस।
1: तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ना, जैसे कि यहाँ से हम फॉरेन कंट्री जाएं, वहां पर अपने जो
2: और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रही हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
3: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
2: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़गाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए। देखो
6: शुक्ला जी, वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
8: असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना

0: अरे
1: सांप
0: अरे क्या हुआ?
2: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
3: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
4: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
3: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने
5: का। अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: एकदम।
7: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
8: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
9: जुबान।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहना जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तो तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा देश जीतेगा। टीवी हारेगा देश
1: जीतेगा। मिश्रा शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी तभी इतने चमक रहे हो हैं।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
0: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
4: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
5: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
6: जुबान।

0: कानू दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। तो जरूर जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से तुहां तक रहना है दो ते तीन बजे तक। इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से जरूर करी थी है कने श्रोता भी अपनी शुरुआत करने इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ना जेड़ा ऐसे शुरू हुई न या कॉल करना जेड़ा ऐसे शुरू हुई न। पर मैं तुह तक दसी दी है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से तुह तक रहिंदा है दो ते तीन बजे तक कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ कन्ने जुड़दे न कने अहां कन्ने गलबात जेड़ा ऐसे जरूर करते न। पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके न करते न तिना कन्ने गलबात से कुथों ते बोला दे न तिना दा ना क्या है। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी मैडम, तुहां?
0: जी हां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुत्थों दे रहने वाले ने कने तुहांदा नाम क्या है जी?
1: धर्मशाला दे
0: जी। ता धर्मशाला दा मौसम क्या बोला दा इस टाइम?
1: धूप लगी मैडम जी।
0: जी अच्छा, धूप लगी हो?
1: हां जी
0: जी। ता धूप कने अपना जेड़ा काम है सभी करा दे होने तुहां?
1: मैड भी कम दा करना पोना, रोटी ताई मिलनी।
0: जी अच्छा, काम करके ताई रोटी मिलनी है।
1: जी जी मैडम जी
0: जी। ता कितना की तुहां अपने जीवन च संघर्ष कीता, मेहनत कीती, क्योंकि हर मेहनत दे पिछे कोई ना कोई जेड़ा कहानी है से जरूर होंदी ना जी?
1: मैडम जी जालू जे काम सिखा ले जालू दे रात दे निकी गरी का।
0: जी अच्छा, जालू हां जी हां जी, जालू ते काम सिखा दे तालू ते रात दी निक करी त्या। रेडियो गुंजन कने मन जेड़ा ऐसे अपना लगाया तुहा ना जी?
1: क्या करना मैडम जी, लगाना पौना
0: जी। वैसे भी दुकान दी गल करिए या अहां जालू ट्रैवल कर दे न ता मन नहीं करदा कि गाने सुनी लिए या काम भी हो जांदा कने मनोरंजन भी हो जांदा कने कुछ गल्ला जेड़ा जरूरी होनिया सभी तो हां तक पूछ जानिया ना जी?
1: हां जी हां जी मैडम जी, ये दुकान पुराना फिल्म हॉल हुंदा ना कने रोड?
0: जी जी
1: बस ती सगली है जी थल्ला जाएगी मैडम जी।
0: जी अच्छा अच्छा
1: हां जी
0: जी, चलो अच्छी गल है जी। श्रोता अगर सुना देंगे तो सह जरूर तो तक पूजी आना है तीना।
1: ठीक है
0: जी जी जी। ता विजय जी, आज तो हम कुंदिया गीत जेड़ा ऐसे सुनना पसंद करके।
1: जिंदगी सोनी है शिकवे के करिए।
0: जी जिंदगी सोनी है शिकवे की करिए।
1: हां जी वाणी
0: जी जरूर ए गीत ए फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: ठीक है मैडम जी
0: जी। तो श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने। तो हर कुसी दी मेहनत दा अलग ही अंदाज है, क्योंकि मेहनत करना भी जरूरी है कन्ने। जलो हम मेहनत करते हैं ना तो उस पर काम करना भी जरूरी है। इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर लैंदे न गलबात से कुथ ते बोला दे न। पहले श्रोता तो धर्मशाला ते जुड़े न कने श्रोता कुथ ते न इनाते भी पूछ दे न। हेलो।
2: हेलो नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी तुहां अपना नाम दसी दिया कने कुहा जगह दे रहने वाले न जरूर दसी दिया जी।
2: मैं तो रोड पे तो बोलना चाहिए रमेश मेरा नाम है
0: जी। अच्छा, अगले जेड़ा श्रोता न से तंगलोटिया ते बोला देना जी।
2: हां जी हां जी
0: जी। ता तंगलोटिया दी क्या हाल चाल है जी? फसला दे क्या अपडेट है? फसला
2: दी बस तैयारी हो रही है
0: जी। अच्छा,
2: पर जरा के मौसम ने दिखा बड़ा ही बैठा था
0: जी जी। फसला दी पूरी पूरी तैयारी है कि अली है थोड़ी देरी
2: कसम दादा के 100 नंबर पट्टा है
0: जी। अच्छा, 100 नंबर जेड़ा धान लगाया से पक्की या?
2: पक्की ऐसा तो बोला था दिन देखे बढ़ गया
0: जी जी जी जरूर। जी जी मौसम भी कई बार अपनी करवट जेड़ा है से जरूर बदला था ना जी।
2: ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਲ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ
0: ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇ ਫਸਲ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਫਸਲ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: गीत सुनना पसंद करके तो डुगी डुगी नदियां जी कुंडिया गीत बोले तो हां
2: जुग जुग जियो धारा दियो गुजरो
0: जी अच्छा जुग जुग जियो धारा दियो गुजरो
2: हां जी
0: जी जरूर तोंदी जेड़ा फरमाइश है से तोहां तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बहुत धन्यवाद जी तोहंदा तशो तों कार्यक्रम दा जेड़ा आगास है से यहां करा दिन विजय जी दी फरमाइश तिना दी फरमाइश यहां तक पहुंची हुए तो जरूर इसी गीत कने यहां कार्यक्रम दा जेड़ा आगास है से करा दिन।

0: दर्शकों तो सारे की तिंजोय की तक ने फिरी ते हम वापिस आई होना अपनी गलबात ऊपर कने तो हां सारे भी गलबात भी एंजॉय करा दे होने ने कने इस सफर कने भी जुड़ा दे होने ने श्रोता जीड़ा ने से जरूर आहां जो कॉल भी करा दे ने मैसेज भी जरूर करा दे ने तो जरूर आजकने दिन दी अगर आहां गल करिए तो आजकना जेड़ा दिन ने बेहतर खास है बुधवार दा ए दिन ने कने 30 सितंबर 2026 की गल करिए हर दिन कुछ नई सीख जिहड़ा सियाहां वास्ते लेख रही होंदा है कने कुछ छोटी छोटी जिहड़ा कहानियां होंदियां सभी आहां जो बड़े सारे सबक जिहड़ा से जरूर देख रही जांदियां ने कने तुहां सारे भी गलबात कने जिहड़ा कार्यक्रम दा सफर है सभी जरूर इंजॉय करा दे होने कने सफर च जुड़ने वास्ते जिहड़ा आहां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे ने क्योंकि नंबर तुहां तक पुज्जिया होगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज जिहड़ा है से करी सकदे नंबर है नंबर जिहड़ा है से तुहां सारे ही नोट करा नंबर है 7018117091 नंबर तुहां तक पहुँचाई तो है कने बाकी जिहड़ा काम है से तुहां दा है तो तुहां भी इंतजार जिहड़ा है से करते रहिंदे ने कि कालू दिया कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तुहां तक पुजदा है कने आहां भी समय समय अनुसार जिहड़ा कार्यक्रम दे सफर हन से तुहां तक पहुँचांदे ने तो श्रोताओ गलबात करिए जिंदगी दी तो जिंदगी दा जिहड़ा सफर है ना सभी बेहतर खास है अजकना जिहड़ा दिन है सभी आहां वास्ते खास है कने इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता न सियाहां कने जुड़ चुके न कर दिन तिना कने गलबात से कुथु ते बोला दे न तिना दा ना क्या है जी नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हां जी बढ़िया
0: जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना क्या है जी
1: मेरा नाम पहाड़ी ते बोला
0: जी कुथु ते बोला दे
1: पहाड़ी ते
0: तुहांदी आवाज कुछ क्लियर नहीं आउंदी जी
1: मैं बोला रहा पहाड़ी ते बोल
0: जी जी जी ता क्या काम कार तुहां छेड़िया क्या करा दे
1: मक्की मुकी
0: जी क्या काम करा दे
1: मक्की लाई
0: जी जी ता आज तुहां कुंदिया गीत जिहड़ा से सुनना पसंद करके
1: मैम मैं मेरा गाना है मेरे समाज का भावना जरियाल का आधी राती रजमा
0: जी भावना जरियाल दी आवाज च गाना है
1: आधी राती रजमा आधी राती रजमा
0: जी जरूर है गीत ये फरमाइश तुहां तक पहुंचा दे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
1: धन्यवाद जी धन्यवाद
0: जी दर्शकों इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते हैं

परशुतम फरमाइश अहां पहुंचाई परवीन जी तक कने सरेने वाले ने पालमपुर ते। इसी कने अहां फिरी ते वापिस आई हूं अपनी गलबात उपर। 30 सितंबर की गल करिए तां अजकणा जिहड़ा दिन है से कयो खास है, क्योंकि हर दिने दी अपनी जिहड़ा खासियत है से जरूर होंदी है। कने जालू अहां अगला दिन दिने दी शुरुआत करदे ने तां अहां हमेशा यही बोलदे ने कि दिने दी जिहड़ा शुरुआत है से सकारात्मक सोच कने अहां जो जिहड़ा है से करना चाहिदी। तो अज अहां 30 सितंबर जो जिहड़ा खास दिवस बना दे न से बना दे न अंतरराष्ट्रीय जिहड़ा अनुवाद दिवस है से अज अहां बना दे न। कने इसी कने विश्व समुद्री दिवस जिहड़ा है से अज अहां बना दे न। तो जिहड़ा भाषा का अनुवाद करना तेदे पिछे जिहड़ा काम करना जितने भी जिहड़ा काम करा देना तिना जो मान सम्मान देना जिहड़ा अनुवाद दिवस जिहड़ा अज अहां बना देना तो जरूर इहदे उपर अहां गलबात करा देना। कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे, कने अहां कन्नै गलबात जिहड़ा है से जरूर करी सकदे। तो गलबात अगर अहां करिए मेहनत दी, क्योंकि हर काम जिहड़ा है से मेहनत ने अहां करदे ने। जिहड़ा छोटी छोटी कहानियां ने से अहां जो बड़ियां सारियां जिहड़ा सीख है से देख रही जांदियां ने। घड़े दा अगर अहां एहसास करिए, क्योंकि घड़े दा जिहड़ा एहसान है से अहां पर बड़ा ज़्यादा है। छोटी जी कहानी है से जरूर तुहां तक पहुँचानी है। एक जिहड़ा गल करिए बुजुर्ग होंदे थे तिनाल जिहड़ा घड़े दा गल करी घड़ा जिहड़ा है से तिनाल था। कने एक बारी से घड़े च पानी जिहड़ा है से भरी करी लौंदे थे। कने रोज़ मेहनत करदे थे पर एक दिन जिहड़ा है से तिना दा जिहड़ा घड़ा है से टुटी जांदा है या तिते पानी जिहड़ा है से निकलना शुरू हो जांदा है। पर जिहड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है से तिस घड़े जो बोलता है कि हुण तेरा कोई काम नहीं है। पर से घड़ा जिहड़ा है से मुस्कुराई करी बोलता है कि मेरा काम कोई नहीं है, मेरा तो बड़ा सारा काम है, क्योंकि मैं जिहड़ा है से जिहड़ा राह लगे फूलन तिना जो पानी जिहड़ा है से मेरा पानी जिहड़ा है से तिना जो मिलता है कने से बड़े ही प्यारे जिहड़ा ने से खिलदे न। तो शो तो कोई भी काम अहां करदे न तहां खुद जो कदी भी जिहड़ा है से कम नहीं समझना है, क्योंकि कोई भी अहां काम करदे न तां काम करना अहां पर निर्भर करता है कि अहां किस तरीके ने काम करदे न। छोटे छोटे काम ही अहां जो बड़े मुकाम तक लेकर जांदे न। पर हौसला जिहड़ा है से खुद पर रखना है तहां। इसी कन्नै अहां फ्री ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाना है कन्नै तहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलना है। अगली फरमाइश अहां तक पहुंची हो वह तंगलोटिया ते कन्नै तिना दा नाम है रमेश जी तक कहाँ ये गीत पहुँचा देन। गीते दे बोलन जुग जुग जियो धारा दियो गुजरियो, तो ज़रूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन। कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना तक भी ये फरमाइश अहाँ पहुँचा देन। कने तो वहाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी। इसी गूंज कने जल्दी जल्दी तुह सारे भी जुड़िया फ्री ते तुहां तक नंबर जिहड़ा है से अहां पहुँचाई देन। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाई दे कने इसते बाद अहां तुहां तक उन्हें फरमाइश पहुँचा देन।

धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इसी कने तोहा सारे ये गीत जिहड़े से इंजॉय कीता कने जरूर जिहड़ा घड़े दा पानी है इसे बड़ा प्यारा होंदा, ठंडा ठंडा पानी होंदा कने जालू अहां इस पानी जो पींदे न तो कुथी ना कुथी अहां जो बड़ा अच्छा लगता है कने। पर अज कने दौर दी अहां गल करिए तां अजकल घड़े दा पानी जिहड़ा है इसे कुण पीदा, क्योंकि फ्रिज जिहड़ा न से अहां लाइयो, कूलर अहां लाइयो तां अहां ज़्यादातर फ्रिज दा पानी पीना पसंद करदे। बेशक फ्रिज दा पानी जिहड़ा है से ठंडा होंदा पर सही अहां जो कुथी ना कुथी बीमार करी करी जांदा। जिन्हें अहां कोई भी काम करी करी जिन्ना अगर अहां धुप्पा च कोई भी काम करा दे न कने एकदम अहां घरे जो जांदे न या कुथी भी अहां फ्रिज दा पानी पींदे न तो से अहां दे गले जो भी खराब करदा है कने अहां दी सेहत जो भी कुथी ना कुथी खराब करदा है, नुकसान जिहड़ा है से अहां जो दिंदा है। तो ज़रूर तो सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कने। गलबात आज अहां करा देना अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस दे बारे च। जिहड़ा अनुवाद दिवस है से अज अहां बना देना कने तुहां सारे भी जरूर जागरूक जिहड़ा है से ओ देना कने इसी कने जिहड़ा ए जिहड़ा अनुवाद है से अहां जो इक दूए ने जोड़ी के रखदा है कने एक दूए का जिहड़ा एहसास है से दिलांदा है, क्योंकि अहां दी जिहड़ा माटी है या अहां दी जिहड़ा मातृभाषा है या अहां दी लोकल लैंग्वेज है, अलग अलग जिहड़ा लैंग्वेज हन तिना दी गलबात करिए तां से अहां जो हमेशा एक दूए ने जोड़ी करी रखदियां ने कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़दे न कने अहां फिरी ते थोड़ा जिहा अगे बढ़ना है कने तुहां तक अगली जिहड़ा फरमाइश है से पहुँचानी है, क्योंकि श्रोता भी इंतज़ार करा दे न कि कालू दियां तिना दियां जिहड़ा फरमाइशा न से अहां तिना तक पहुँचान दे न। तो ज़रूर तिना तक अहां ये गीत पहुँचा दे न से तिना दा नाव है मनीष जी कने से रहने वाले न छतराड़ी ते, तो ज़रूर तिना तक अहां ये गीत पहुँचा दे न।

91.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारिया का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। समय दी ओर नज़र दौड़ाइए तो 2:38 कार्यक्रम च हुई न कने तो हाँ भी समय के अनुसार चले होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से जरूर करा देने न। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आज अहाँ मना देन 30 सितंबर जो तो अनुवाद सिर्फ जेड़ा विदेशी भाषाएं न तिना जो समझने का जरिया ही नहीं है बल्कि जेड़ा हंदी लोक संस्कृति है लोक गीत न कहानियां न या हंदी माटी दी जेड़ा महक है सभी तो जो एक ही दुए ने जोड़ी कर रखती है या हाँ जो हमेशा एक दुए ने जोड़ी कर रखती है क्योंकि संस्कृति दे बारे च जानना भी जरूरी है। कने अज कने दौर की गल करिए हाँ जेड़ा संस्कृति है या अपने रीति रिवाज हैं तिना जो कुथी ना कुथी भूलते चले हो कुथी ना कुथी अली भी अहाँ अपनी जेड़ा संस्कृति है या रीति रिवाज हैं या अहाँ दा जेड़ा कोई भी काम है तिहा जो अहाँ सराहनीय जेड़ा इसे करते हैं कने यही जेड़ा संस्कृति है से अहाँ जो हमेशा एक दुए ने भी जोड़ी के रखती है। कहानियां दी गल करिए ता कहानियां भी अहाँ जो एक दुए कने जोड़ी के रखती हैं ना कने जेड़ा लोक गीतन दी ता बखरी ही गल है क्योंकि जालू भी शादी विवाह च है गीत बजते हैं या कोई भी जेड़ा संगीत है चाहे से पहाड़ी संगीत है चाहे से गदियाली संगीत है चाहे से हिंदी संगीत है हर तरह दे जेड़ा संगीत हैं तो हाँ भी सुनना पसंद करते हैं ना कने कुथी ना कुथी जालू हाँ अपने पहाड़ी गीत या गदियाली गीत सुनते हैं तो हाँ जो भी जेड़ा खुशी जेड़ा से महसूस होती है कने क्योंकि लोक गीत च अगर हाँ शादी विवाह की गल करा दे तो हर जेड़ा शादी विवाह का फंक्शन है हर कोई भी रस्म है तिदा पूरा ही जेड़ा गीत ऐसे बनया होंदा है कने तो हम भी सुनते न पर सभी आजकल हाँ अपने आस पास दिखते न या हाँ शादी विवाह च दिखते न तो सभी अहाँ जो बड़े कम दिखने जो मिलते न क्योंकि तिदिया जगह जेड़ा ऐसे डीजे आई हो डीजे बिना जेड़ा ऐसे ब्याह जेड़ा ऐसे अधूरा लगता है तो तुहां भी जरूर इस गल जो जेड़ा ऐसे ध्यान ने सुना दे होने न कने रिलेट जेड़ा ऐसे करा दे होने न कि कुथी ना कुथी जेड़ा अहां दे खुद अहां गीत जेड़ा गांदे थे से अहां बिल्कुल कम करी थे हो तो जरूर इसके ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है कने अपनी जेड़ा संस्कृति है उस जो बचाना भी जरूरी है। तो श्रोताओं तो सारे भी कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ सकते कने अहां फ्री ते इस सफर जो अगे बढ़ाना है कने श्रोता जेड़ा अहां तक फरमाइश पहुंचाई हुए से फरमाइश अहां तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम है चरणदास जी कने सरैने वाले न खनियारा ते तो तिना तक अहां ये गीत फरमाइश पहुंचा देना तो सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता तो सारे गीत इंजॉय किया कने फिर ते हाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर गलबात भी जरूर अहाँ तुह तक पहुँचानी है कने इसी कने अहाँ जेड़ा तुहदिया फरमाइशा ने सभी जरूर पहुँचानिया ने। श्रोता जेड़ा ने से व्हाट्सएप मैसेज कने अपनी जेड़ा फरमाइशा ने से जरूर अहाँ तक पहुँचा दें तो अगली जेड़ा फरमाइश है सभी अहाँ तक पहुँची हो व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा ना वे सचिन जी कने से रहने वाले ने इच्छी थे तो जरूर तिना तक भी अहाँ ये फरमाइश पहुँचानी है पर अहाँ जेड़ा गलबात करा देन से करा देन अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के बारे च ते इसी कने जेड़ा संस्कृति है अहाँ दी जेड़ा परंपराएं न से जरूर अहाँ जो एक दुए ने जोड़ी कर रखती हैं अंग्रेजी भाषा जेड़ा है से अहाँ जो ज्ञान दिंदी है कने जेड़ा हिंदी भाषा है से अहाँ दी आत्मा कने पहचान है कने जेड़ा अहाँ दी मातृभाषा है सभी अहाँ जो कुथी न कुथी एक दुए कने जोड़ी कर रखती है कने कई बार अहाँ अपने आस पास दिखते न कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों जो हमेशा यही बोलते न कि तुहां इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा जेड़ा है से सीखनी है कने जेड़ा लोकल लैंग्वेज है से नहीं बोलनी है। ठीक है लोकल लैंग्वेज बोलना भी जरूरी है अहाँ वास्ते इसी कने हिंदी कने इंग्लिश जेड़ा है सभी अहाँ वास्ते जरूरी है पर कुथी ना कुथी अहाँ अपनी जेड़ा लोकल लैंग्वेज है तिहा जो बच्चे तक जेड़ा है से नहीं पहुँचाते न कने तिना जो हमेशा बार बार जेड़ा है से अहाँ कुथी ना कुथी टोकते न तो जरूर अपनी संस्कृति कने अपने जेड़ा रीति रिवाज हैं तिना कने बच्चों जो हमेशा जोड़ी के रखा क्योंकि बच्चे जो जालू अहाँ अपनी संस्कृति कने रीति रिवाजा कने जोड़ी के रखते न तो बच्चा भी कुछ ना कुछ जेड़ा है से जरूर सीखता है कने अपने माता पिता का भी मान सम्मान करता है कने बाकी जेड़ा व्यक्ति हैं तिना का भी जरूर करता है क्योंकि घरे ते ही शुरुआत जेड़े से बच्चे दी होंदी है कि बच्चे जो हाँ किस तरीके ने जेड़ा संस्कार हैं सदे देन किस तरीके ने जेड़ा परवरिश है से हाँ बच्चे तक पहुँचा देन तो ज़रूर सोच विचार करने की ज़रूरत है कने काम जेड़े से तो होंदा है सकारात्मक विचार दिना तक पहुँचा क्योंकि नकारात्मक विचार तो हर कोई पहुँचाइंदा है यहाँ खुद भी सोचना जेड़े से शुरू हो जाते हैं चाहे यहाँ दे दिमाग च सकारात्मक विचार ना हो पर जेड़ा नकारात्मक विचार हैं से सबसे पहले जेड़े से आई जाते हैं तो जरूर नकारात्मक जेड़ा विचार हैं तिना जो दूर भगाना है कने सकारात्मक जेड़ा विचार हैं तिना जो अपनाना है इसी कने अहाँ भी थोड़ा दिया आगे बढ़ते न कने जेड़ा फरमाइश तुह तक अहाँ दसी थी से तुह तक पहुँचा देना तुह सारे भी इंजॉय करा।

प्रश्नोत्तर हो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने हाँ कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा दे कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम है शमशेर सिंह जी कन्ने से रहने वाले ने दरगाटा ते तो जरूर तिना तक अहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा देना तो सारे भी इंजॉय करा।

कानू दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए तुह सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तुह सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक रहा है दो ते तीन बजे तक तो सफर जेड़ा है से हुण बोला दा कि अनुमति जेड़ा है से तुह ले लिया क्योंकि समय के अनुसार चलना भी जरूरी है कने समय के अनुसार जितने भी काम मन तिना जो करना भी जरूरी है तो इसी कने तो हाँ सारी भी अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपने दा ख्याल भी जरूर रखा क्योंकि सेहत ठीक तो सारे काम जेड़ा न ठीक क्योंकि सेहत बिना तो कोई भी काम जेड़ा है सियाहां दा नहीं चलता है। अगर सेहत बीमार हो जाती है तो हाँ कुथी ना कुथी काम जेड़ा न सियाहां दे रुक जाते न या अच्छा फील जेड़ा है सियाहां नहीं करी पाते न तो जरूर तो हाँ सारे चाहते न कि हाँ हमेशा फिट एंड फाइन रहन तो अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपने दा जेड़ा ख्याल है सभी रखा कने इसी कने अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कार्यक्रम जेड़ा है से इत्थों ही संपन्न होंदा है।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे,
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
2: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
3: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: एकदम।
4: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
5: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
6: जुबान।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
7: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना है।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम लेकर ही आऊं तुम अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हो चुका हिंदी अपनी गप्पा लेकर तो बहुत बहुत स्वागत है सभी हुनियाले रा सभी लक्ष श्रोता रा जितने भी श्रोता हुनु कर देन श्रोता आज है पूजन बरसड़ जो जी यथो थोड़ी करी प्रूं पेंदा तड़ी पूजन तस ग्रामंज पूजन क्या गल बात भुने क्या इस ग्रामंज कोना सो खास मोड़वा सो तुसो जरूर दस ले लेकिन अय्या पहले आगाज कर लेन कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीत दसोगी

0: सामुदायिक वीडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहा हूँ तुम अपना आरजे वीडियो जो की सचिन कपूर हा। ता आजा है बरसड़ पुजन और बरसड़ में आजा सो के इंदे अम्मा भी कुरे ना ता अम्मा जी तुंदा कार्यक्रम में जो स्वागत है
1: धन्यवाद कुछ बोले
0: जी अम्मा जी तुंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है और शो तो हमारे खास खूबी तुसु दसना चाहता खास खूबी है कि अब मैं 50 सालों की आ सो नुआचड़ी लो रहा और अम्मा तुम दी अब जो उम्र कितने
1: हो गए रे 17 साल वाले
0: 17 साल
1: हां अच्छा फिर बेटी है बच्ची है फिर कोड़े चाहिए तो
0: पंजा साल नुआचड़ी लो रे अमो खैर अपनी कजो की पुराने बुजुर्ग न और ना बंदे थे इतनी याद की कितने साल रहे कितने साल रहने लेकिन
1: याद न थे बारा ना मतलब बड़ी यूनिक गल है श्रोतो कि 50 साल ये नुआचड़ी लो रहे और लगभग लगभग है जो एस्टीमेट लाउंदे हमारा हां यार थी ना बड़े तो 60 तक कर गया गया ही ना
0: तूने तो 60 65 साल मतलब अम्मा री उम्र है 65 ऊपर लगो कर दिया तैया बहुत सारी गलबात करने अम्मा हो गए लेकिन हमदे ने प्यारे दे गीत

0: श्रोतों रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है तो अम्मा ये नुआचड़ी अब तो ये दसो कि तू सारी उम्र ना खोलने और ना खोले तय उम्र भी ना खोलिया लेकिन अजकल अगर है गल करने तो जहने ब्याह कर इंदे ते अगले दिन नुआचड़ी कैंसिल
1: हो गई अज्ञा सुनो तो नुआचड़ी जिंदे ही गया ना
0: हां जी अच्छा
1: खता खर्चे ना अपने जहरा रे साबे ला खरे साबे ये धमारी क्यों के लागो रे तो तुम जवान ना ना वो जाना तो खबर कस कस बेले कह रहे ने उठे कर रहे ने कस कस बेले राम सलाम करने करू करने तो पैसा बेड़ू कर दे रुख रेट ना ना तो बारा लगना रुखे ना रेड़ू का बारा खेरा कुआना अपना आधा ही है ना जो दिमाग के काम है ना
0: दिमाग के काम
1: अस है कैसी है ना अस है जिसमें काम करू रहे ना
0: अच्छा
1: खाने ना बहुत करड़े होंगे आपू बने प्यारा चा चाह कि बालना तू बाला छबिने जागड़ा
0: अपना सत के ना बच्चा सो सत्ते है।

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब हुनु गर्दन अपने होस्ट हो दो सचिन कपूर सोगे और आचा सह जी है थो पुठे बरसर मंजन ता ब्रिकमा जी हो गया है गलबात करु गर्दन। ब्रिकमा जी अब वे बै अंदर ते पहले रे बै अंदर क्या तू सु फर्क लग
1: फर्क क्या लगंदा ना ये नवा जमाने रा मोटर लगे साये पुराने के थी जो लाज शर्मा सब कुछ थे अब है नथे ना अब है सो जरूरी ना ये ता सो जोंडना पाने जट्टी ना पाने के मने कत्ती थम ना पाने अच्छा डाडा है साल जोंडना को आड़ जदे और आहों दे ता जोग नु बुंदा हो
0: जोग नु बुंदा
1: कि गलत कर लुआ
0: बिल्कुल ठीक का
1: हाँ अगर क्या बुना सोचा है ना छिपका हो रहा ना जल पाल ना तंदी ये गेर ना तंदी अब समाजी ना जल बुना क्या बाला ना और कन्ना रे दोनों रिटा होने भी है तो मेरी गल के उची आम चल रही है
0: ना ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं तो है
1: हाँ तो दार ना मैं कुमारी तेरा साल दार चार रुपये बगैर बूढ़ा था मेरा छह साल लारे बिचौले सात उम्र लग गया था मरी बूढ़ा
0: अच्छा
1: हाँ जब आए के पालू रा सो 15 महीने रा छोटू रा मैं फिर भी सो कि मैंने आर्मी री नौकरी में ठोकी था
0: और गल बात कर ले हुंदे ने प्यारे दे

0: वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभ्य ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही तो अपने रेडियो सेट में 91.2 MHz पर आइए जी ब्रेक में जी होगी गल कर दें इं दसो कि इं 13 साल के आसो दार अंदर गोरू चल रो
1: गोरू चार के नहीं चार जी
0: हां तो अमा तहने क्या क्या मतलब यूनिक क्या क्या अलग हुंदा तो दार अंदर जो आज नहीं है
1: खाना
0: और यूनिक गल्ला के सो अम्मा थो जान ले हुन लेंदे ने प्यारे दे गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और हम सचिन कपूरा। हमें जी क्या बोलना चाहते हैं? बोलना
1: ये त्राई पाल की नहीं, मैं आपको मैं जोटी ना है अपने मित्र सजना हो अंदे सो मैं कच्ची लाई करी कुमार का मत है राखा बजाए कच्ची लाके बच्चा
0: क्या
1: पाता। हाँ किधर नहीं जाता जो बच्चे राख 18 महीना गिरंदा।
0: अच्छा
1: हाँ अगर क्या आदत है चलना आ रही ना से
0: सियाने
1: आखरी टाइम कमाना इंदा टाइम थी चूड़ा हथी है कमाऊंगा।
0: अच्छा ये जो डायलॉग मारू एक मौके फिर दस सर कौन दिन डायलॉग
1: याने रे समझ से ना तो सियाने री हक री।
0: अच्छा तेरा क्या मतलब हुआ?
1: तेरा क्या मतलब हुआ जो याने रे समझ आये री गाना ना सियानी हक री न्या।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ बंदा साउना बंदा कोटलू ते पैंट चूड़ा रान ना संजा गटन ते ना बिछान।
0: क्या बात
1: है बुरा बंदा दौड़ू खेरा रान संजा गटन भी ते बिछान भी।
0: क्या बात है क्या गल है अब बड़ा मजा है चुनते तू सोगे का।
1: हाँ गट मार दिया ना मुझे रगा ना ये नहीं बात रही है बोले
0: आइए शोधो
1: या कुलिया भी है लेकिन तेरे उठ रहा है छोक रहा है। ये सब बुटी याना मन बात ले वाले
0: चलो आइए शोधो आइए शोधो कार्यक्रम जो आगे बढ़ने और प्यार दे की ढूंढते अब मैं बड़ी मजेदार गाल बल्लिया उम्मीद करूँ तेरे व्यस्त बुने अपने अपने घर अंदर लेनो।

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही तो अपने रेडियो सेट में 91.2 MHz पर हमें बस पूछ गो आवे ना और कुछ गल हुनाने अपने पुराने
1: तो ना कोई पर पुरानी दम जो कोई पता ना आ गया मिट्टी बोरिया
0: कोई
1: पुराना पुराना मन भूखी जी तुरे ते पुरानी गल्ला भी जड़ी पूरी अगर ना होए मन जिता ना ठना
0: नो मन ना
1: हां ये कमल फुल्ला पर नचना है भरड़ भरड़ भरड़ भरड़ कर ले
0: क्या बात है ता श्रोतो अम्मा तो बड़ा मजा आ सो बे गलबात करने रहा और अब मैं पुरानी गल्ला भी दसी और हमारी जो यूनिकनेस आ सोए है कि अब मैं 50 साल तो किया सो नुआ चढ़े लो रहा और आज अम्मा मुझे लगता कम से कम 70 साल रही अम्मा आ सो लगो कर दे लगभग लगभग ता ये यूनिकनेस थी ठेर तक अम्मा हो के गलबात करें हमारा इंटरव्यू लियो है उम्मीद कर दें तुम वो इंटरव्यू पसंद आ गुना हमारी गल्ला पसंद आई गुणी है ना तो अम्मा भाई लेंदे इजाजत चल बंदे ना ठीक है अम्मा धन्यवाद
1: हाँ धन्यवाद मार्क को वे तो चुगल है
0: जी।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन लेकर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। धर्मशाला में 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जाएगा। स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर लग सकता है प्रतिबंध। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों के अलावा अन्य आयोजनों पर रोक की तैयारी। एसपीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई क्रिकेट विकास की यात्रा। नई दिल्ली में गूंजेगी हिमाचल की महिला किसानों की आवाज। सम्मेलन में प्रदेश से 250 महिलाएं होंगी शामिल। एचपी टेट 2026 के लिए बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर। शिक्षण संस्थानों के लिए तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र का 15 अक्टूबर तक नवीनीकरण जरूरी। धर्मशाला में 3 दिवसीय एफपीओ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। कांगड़ा और चंबा के 28 प्रतिनिधियों ने सीखे व्यवसाय विस्तार के गुर। 3 वर्षीय व्यवसायिक लक्ष्य किए निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से।

धर्मशाला में इस वर्ष 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जाएगा। कार्निवल के आयोजन की तैयारियों को लेकर धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज फैरवा ने की। बैठक में कार्निवल के दौरान प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि कार्निवल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस दौरान संबंधित विभागों को कार्निवल की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों को लेकर भी संबंधित समितियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। प्रदेश के स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाने की दिशा में व्यवस्था तैयार की जा रही है। बताया गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है। हालांकि अब स्कूलों में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ साथ स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए नई दिशा निर्देश व्यवस्था तैयार की जा रही है। 31 तरह के अतिरिक्त कार्य शिक्षकों को करने पड़ते हैं और ऐसे कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो, इस दिशा में व्यवस्थाओं को लेकर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट ने पिछले 2.5 दशकों में केवल मैदानों तक ही नहीं बल्कि आधारभूत ढांचे के स्तर पर भी लंबी यात्रा तय की है। करीब 26 वर्ष पहले जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी HPCA का वार्षिक वित्तीय बजट लगभग 20 लाख रुपए था, वहीं आज ये बढ़कर करीब 167 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व तक लगभग पहुंच चुका है। HPCA जिला क्रिकेट संघ मंडी के अध्यक्ष अजय राणा जी ने बताया कि प्रदेश में क्रिकेट के विकास की यात्रा को संस्थागत रूप से तब का रुख मिला जब वर्ष 2000 में अनुराग ठाकुर ने HPCA की कमान संभाली। उस समय संस्था का वार्षिक वित्तीय आकार करीब 20 लाख रुपए था। समय के साथ संस्था ने क्रिकेट सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और खेल के आधारभूत ढांचे के विकास पर काम किया। आज हिमाचल की क्रिकेट यात्रा में धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश की पहचान को मजबूत करने वाले प्रमुख स्थलों में शामिल है। वहीं मंडी का ऐतिहासिक पड्डल मैदान भी प्रदेश के क्रिकेट यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की 250 महिला किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगी। भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित ये सम्मेलन 30 सितंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन में देशभर से करीब 60,000 महिला किसान कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से महिला किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई हैं। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महिला प्रमुख डिंपल ठाकुर और प्रदेश मंत्री डॉ. नीलम ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से महिला किसानों के कृषि क्षेत्र में भूमिका और उनकी पहचान को मजबूती से सामने रखा जाएगा। साथ ही जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी। सम्मेलन में कांगड़ा चंबा से 5-5 महिलाओं के शामिल होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुल्लू, मंडी, सोलन, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर और सिरमौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी महिलाएं सम्मेलन के लिए रवाना हुई हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HPTET 2026 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की ओर से पात्र अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाता है तो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 600 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाना जरूरी होगा। विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया जाए। जिन शिक्षण संस्थानों के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है या नवीनीकरण लंबित है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजकीय उच्च विद्यालयों और निजी विद्यालयों को परिसर में तंबाकू मुक्त वातावरण बनाए रखने संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। विभाग ने प्रत्येक विद्यालय को सालाना अपनी स्टेट्स रिपोर्ट का आकलन करने और उसके आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता बताई गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

1.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आज बुधवार का दिन है और शाम हो चुकी है और 6 बज चुके हैं। श्रोताओं, थोड़ी सी देर हो गई हमें आने में, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ एक तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा समय हमने ले लिया, लेकिन खैर, कहते हैं देर से ही सही, लेकिन सही मंजिल पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। और हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। आप सभी इस समय ट्यून इन हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का करती हूँ स्वागत और सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और रेडियो के साथ जुड़ चुके होंगे, यानी कि हमारे साथ जुड़ चुके होंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो श्रोताओं, 6 बज गए हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का सफ़र जो है वो हमारा रहता है इस कार्यक्रम में, यानी कि गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक विचार के साथ ही हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विचार के साथ। और आज का विचार हमसे यही कहता है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपनी कोशिशों को मुश्किल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की परेशानियों से नहीं अपने हौसले से पहचाने जाते हैं। तो श्रोताओं, इस विचार पर ज़रूर विचार कीजिएगा और साथ ही कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में क्या है आपके साथ बातचीत करने के लिए, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, जिसका आप सभी को होगा इंतज़ार। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं पराया धन फिल्म्स।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही आपको बता दें श्रोता हूँ 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं श्रोताओं, और हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी एक बार फिर से सुषमा की पैर भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और हमारे साथ यानी कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला हम लेकर आ गए हैं और इस समय आप सभी हमें हमारे फेसबुक लाइव पेज पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर हमें लाइव देख सकते हैं श्रोताओं, और जितने भी दर्शक इस समय हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें भी सुषमा की गुड इवनिंग, और जो सुन रहे हैं उनका तो हमने स्वागत कर भी दिया है और उन्हें गुड इवनिंग कर भी दी है। खैर श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन खास होता है और आज भी हमने एक दिन मनाया, उस पर ज़रूर बात करेंगे श्रोताओं, लेकिन पहले आपसे बात करेंगे कि एक समय था जब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए रेडियो, अखबार या टेलीविज़न जैसे माध्यमों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज के डिजिटल दौर ने हमें अपनी आवाज़ को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाने का एक ऐसा माध्यम दिया है जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सुन सकते हैं, और वह है पॉडकास्ट। बिल्कुल श्रोताओं, और आज हम बात भी इसी विषय पर करेंगे यानी कि इस दिन पर बात करेंगे। आज इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मनाया गया और उस पर हम बात कर रहे हैं। श्रोताओं, पॉडकास्ट यानी ऐसी ऑडियो सामग्री जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल पर या दूसरे डिजिटल माध्यम पर सुन सकते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात है समय की कोई पाबंदी नहीं। आप सुबह सैर पर हों, घर का काम कर रहे हों, सफ़र पर हों या खाली बैठे आराम कर रहे हों, उस समय भी आप अपनी जो भी पॉडकास्ट है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, जानकारियां भी आप तक पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो चलिए बातों को यहां पर थोड़ा सा देते हैं विराम और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। और श्रोताओं, ये गीत आप सुनने वाले हैं यादों की कसम फिल्म से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है सुरेश वाडकर ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत आप सभी के अपने रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ इस समय आप जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। बिल्कुल श्रोताओं, ज़रूरी नहीं होता कि कई बार हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात ही करें, एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को देखना भी बहुत बड़ी बात है। और कई बातें ऐसी होती हैं जो जुबान नहीं कहती लेकिन आँखें कह जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं, आजकल के समय की अगर हम बात करें तो आजकल एक दूसरे के पास बैठकर भी हम एक दूसरे को नहीं देखते हैं, ना ही बात करते हैं। हम देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन को। अब श्रोताओं, कई श्रोता ये कहेंगे कि हम मोबाइल फ़ोन के पीछे ही पड़ गए हैं, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई मोबाइल फ़ोन के पीछे पड़ा ही है। कोई भी दो मिनट के लिए भी फ्री बैठता है तो अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेता है और उसे निहारता है या उसी से बात करता है या उसके माध्यम से दूसरों के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन थोड़े समय के लिए अगर इसे हम रख दें और अपनी प्रकृति को निहारें, अपने घर पे जो हमारे सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बैठें, उन्हें देखें, उनके साथ बात करें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो है लेकिन वैसे हमारे पास समय नहीं है। हर किसी के पास यही जवाब होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ना जाने कहाँ खो गया है श्रोताओं, लेकिन देखिए समय वही है, हम भी वही हैं, दुनिया भी वही है, लेकिन हमने अपने आप को कैद करके रख लिया है। सिर्फ छोटी सी दुनिया अपनी बना ली है, हम और हमारा मोबाइल फ़ोन। तो श्रोताओं, मोबाइल फ़ोन को भी ज़रूरी है, आजकल के समय में मोबाइल फ़ोन के बिना हमारा कोई काम होता भी नहीं है। लेकिन अगर समय समय पर उसे इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने बाकी के रिश्तों को भी समय दे सकते हैं। खैर, बातों बातों में हमने ये बात आपके साथ कह डाली, क्योंकि गीत ही ऐसा था कि कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, और देखने के लिए चाहिए समय और एक दूसरे के सामने बैठना ज़रूरी है। खैर श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप जुड़े हैं और आप सभी जानते हैं कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं, जानकारियां भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं, लेते हैं एक जानकारी। राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सामुदायिक मध्यस्थता विवाद मुक्त ग्रामीण भारत की ओर परियोजना के द्वितीय चरण के तहत जिला कांगड़ा विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्थानीय स्तर पर विवादों के शीघ्र, सरल और आपसी सहमति से समाधान की दिशा में पहल की है। परियोजना के अंतर्गत श्रोताओं, जिला कांगड़ा की 5 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इनमें है धर्मशाला की सुक्कड़, नूरपुर की सुलियाली, देहरा की सुनेहत, जयसिंहपुर तथा इंदौरा की सुदेरवा ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन पंचायतों में

के माध्यम से संभव है। उन्होंने संबंधित पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया है। श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के माध्यम से। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम जानकारियों को यहीं रोकते हैं, अपनी बातों को भी यहाँ विराम देते हैं और आपको फिर से आगे की ओर ले चलते हैं, यानी कि आपको सुनवाते हैं गीत। तो लीजिए, कार्यक्रम में सुनिए जब वी मेट फिल्म का ये गीत, शान और उदित नारायण की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे, अपनी बातें जारी रखेंगे। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने बात जो है वो छेड़ी है इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे पर। और श्रोताओं, जो ये खास दिन होते हैं इन पर हम लोग सुबह भी बात करते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी आपने इस पर ज़रूर बातचीत सुनी होगी। लेकिन श्रोताओं, हमारे कई श्रोता ऐसे होते हैं जो सुबह किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए हम वही आज के जो दिन होते हैं, जो खास दिन होता है, उस पर ज़रूर शाम के कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट डे पर। तो श्रोताओं, पॉडकास्ट की दुनिया कितनी बड़ी है ये भी आप जानते हैं। आज पॉडकास्ट में लगभग हर विषय पर बातचीत मिल जाती है, कहानियाँ हो, शिक्षा हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, या फिर खेती बाड़ी ही क्यों ना हो। साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता, मनोरंजन, सिनेमा, करियर, व्यक्तित्व विकास और समाज से जुड़े मुद्दे, यानी जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय पर अपनी पसंद की आवाज़ और अपनी पसंद का कार्यक्रम चुनने की आज़ादी आपके हाथ में है। लेकिन श्रोताओं, पॉडकास्ट की असली खूबसूरती सिर्फ सुनने में नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी, अनुभव और विचारों को रिकॉर्ड करके दूसरों तक पहुंचा सकता है, यानी सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, आज का इंसान अपनी कहानी सुनाने वाला भी बन सकता है। तो श्रोताओं, अपनी बातों को अब फिर से यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, आपका मनोरंजन करवाने का भी ख्याल हमें रखना होता है। तो बिल्कुल आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि अब हमें आगे बढ़ना है और लेना है कार्यक्रम का अगला गीत। तो लीजिए, सौदागर फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और दिल देके दिल लेने का सौदा जो है इस गीत में किया गया। तो श्रोताओं, इस गीत को सुनकर एक जो शब्द आपने सुना सौदागर, बहुत सारे श्रोता हमारे इस शब्द का अर्थ जानते भी होंगे और हो सकता है कुछ एक लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आपको बता दें श्रोताओं कि सौदागर शब्द जो है पुराने समय के उन व्यापारियों के लिए इस्तेमाल होता था जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर सामान खरीदने और बेचते थे। सौदागर अक्सर कपड़ा, मसाले, अनाज, सूखे मेवे और कई हस्तशिल्प की वस्तुएं जैसी चीज़ों का व्यापार करते थे। उस समय आज जैसी दुकानें और बड़े बाज़ार हर जगह नहीं होते थे, इसलिए कई व्यापारी कारवां के साथ लंबी यात्राएं करते हुए दूर दराज के शहरों और गाँव तक पहुँचते थे। तो श्रोताओं, जब चीज़ें हम तक पहुंचती थी वो समय था सौदागरों का, और आज तो हर सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा, हम किसी भी शॉप पर जाकर सामान ले सकते हैं। लेकिन सौदागर जो है वो सिर्फ सामान का सौदा करने वाले व्यापारी नहीं थे, वे एक जगह की चीज़ों को दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले उस दौर के सेतु भी थे। उनके साथ जुड़ी यात्राएं, बाज़ार और कारवां हमारे पुराने व्यापार और लोक जीवन की एक खूबसूरत तस्वीर सामने लाते हैं। इसलिए जब हम सौदागर शब्द सुनते हैं तो इसमें सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पुराने समय की यात्राओं और बदलते बाज़ारों की कहानी भी छिपी दिखाई देती है। बिल्कुल श्रोताओं, ये जो गीत है ना, ये कहीं ना कहीं हमें पुराने समय की ओर लेकर जाते हैं और पुराने समय की जो पिक्चर है वो हमारे सामने लेकर आते हैं। और सोचना भी चाहिए, जब हम गीतों को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द जो है हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ये शब्द क्यों बना था और इसके पीछे क्या कहानी थी। तो ये कहानी सौदागर की हमने आपको सुनवा दी है, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे और एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाएंगे जो हमारी दोस्ती पर बना है, यानी कि आपकी और हमारी। तो श्रोताओं, दोस्ती का रिश्ता जो है वो ऐसा रिश्ता है जिसे तोड़ने का मन नहीं करता है और तोड़नी भी नहीं चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, और ये गीत आप सभी के लिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को शोले फिल्म से किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में।

श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना दोस्ती पर आधारित ये गीत। दोस्ती श्रोताओं कोई भी नहीं तोड़ना चाहता। आज भी अगर आप किसी भी उम्र में क्यों ना पहुंच गए हों, आपको अपने बचपन के दोस्त याद आते होंगे और दोस्ती याद आती होगी कि दोस्ती को अब तक लोगों ने निभाया है और निभाते आए हैं। श्रोताओं, दोस्ती ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें कभी सोचना नहीं पड़ता किसी बात को लेकर। कोई भी बात हो, कोई भी किंतु परंतु अपने मन में हो तो मन करता है अपने दोस्त के साथ उसे साझा किया जाए, और हम करते भी हैं। तो दोस्ती के रिश्ते के आगे तो कोई रिश्ता शायद ही है। श्रोताओं, अगर आपकी किस्मत में भी, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसका शुक्र कीजिए कि आपकी लाइफ में वो है। तो श्रोताओं, ये दोस्ती वाला गीत जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आपने साथ में गुनगुनाया भी होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और बात करते हैं, आज 30 सितंबर का दिन है। 30 सितंबर 2026 को सबसे प्रमुख और आपके रेडियो कार्यक्रम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। बिल्कुल श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दिन जो है हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है, और भाषा के माध्यम से देशों, संस्कृतियों और लोगों के बीच संवाद व समझ को बढ़ावा देने वाले भाषा विशेषज्ञों के काम को सम्मानित करता है। बिल्कुल श्रोताओं, कहीं भी चले जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद हमारी जो भाषा है उसमें बदलाव आता है। हमें बात करने में थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाषा कुछ किलोमीटर के बाद बदलती चली जाती है। लेकिन भाषाएं अगर हम किसी की भी सुनते हैं तो बहुत मीठी लगती हैं, और मन करता है कि हम भी उनकी बोली को बोल सकते, समझ सकते। और बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो एक बोली नहीं कई बोलियों को बोलते भी होंगे, समझते भी होंगे। लेकिन जो नहीं समझते, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश हमें भी समझ आती, हम भी बोल पाते। तो नई नई भाषा जो है वो सीखनी चाहिए, और जब हम सीखते हैं, बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस विषय पर हम और भी बात करेंगे श्रोताओं, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक और गीत। तो लीजिए कार्यक्रम में सुनिए सागर फिल्म का ये गीत, और SP बालासुब्रमण्यम ने

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय आप सभी जानते हैं शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का रहता है और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं, साथ ही आपका मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ और साथ ही जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं। शाम का ये समय रहता है श्रोताओं और शाम के इस समय में हम अपने घर के काम भी कर रहे होते हैं और रेडियो के साथ भी जुड़े होते हैं। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि अगर अपने काम के साथ म्यूज़िक यानी कि गीतों को हम सुने तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं दिन भर की थकान भी हमारी हट जाती है। तो श्रोताओं, संगीत को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए, संगीत के साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग को छू जाते हैं और एक मेडिसिन का काम भी हमारे लिए करते हैं। तो कार्यक्रम में और भी गीत अभी आप तक पहुंचाने हैं, जानकारियां भी आप तक पहुंचानी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में अब समय हो रहा है समाचारों का। तो समाचार सुनना भी ज़रूरी है, अपने देश प्रदेश की खबरें जो हैं वो हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे पहले समाचार और बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हमारे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप जुड़ पाएंगे थोड़ी सी देर के बाद यानी कि समाचारों के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं समाचार।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और समाचारों के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीत के साथ। तो लीजिए, कार्यक्रम में बने रहिए और सुनिए दोस्त फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, और आप सभी इस गीत को सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में।

कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, गाड़ी बुला रही है ना, सीटी बजा रही है, ये जिंदगी भी हमारी श्रोताओं एक गाड़ी ही है जिस पर हम सवार हैं, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं मंजिल पर हमने पहुंचना ही है। श्रोताओं, जो सफ़र शुरू होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म भी होता है, लेकिन ज़िंदगी को अगर हम हंस कर गुजारें तो बहुत अच्छा रहता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें ही लेकर बैठे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, लेकिन अगर ज़िंदगी में हम थोड़ा सा और विस्तार से देखें, ऐसे लोगों से मिलें जिनके पास शायद हमारे जैसा भी नहीं है या हमसे भी कम है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत कुछ दिया है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी शिकायतें हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत कमी कहीं रह गई है तो उसे पूरा करने के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। भाषा जो है श्रोताओं, वो रिश्ते बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। घर में माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत को ही देख लीजिए, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे तुरंत डांट देते हैं, तो वह शायद अगली बार अपनी बात बताने से डर भी जाए। इसलिए कई बार हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे कि वो बात बिगड़ जाती है। इसलिए सोच समझ कर ही हमें अपनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, शब्दों का चुनाव करना चाहिए। साथ ही श्रोताओं, भाषा हमारी अलग अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं सेम होती हैं। अगर हम में दया भाव है तो हर किसी में दया भाव है, क्रूरता है तो क्रूरता हर किसी में भी है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर अलग है तो वो है भाषा, और कई सारी भाषाएं ऐसी हैं जो हम सुनते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, समझ कुछ आए या ना आए। तो श्रोताओं, ऐसा ही एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम में। तो चलिए, क्या कहता है ये गीत सुनते हैं। खुद्दार फिल्म से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

तो श्रोताओं लीजिए, हमने इस गीत के माध्यम से आपको बता दिया कि बोलने का तरीका अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भावना एक ही होती है। बिल्कुल अंग्रेजी में कह लीजिए या गुजराती में कह लीजिए या पंजाबी में कह लीजिए, लेकिन बात तो वही है कि हम प्यार करते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और देखिए हर भाषा का अपना ही एक महत्व होता है, और भाषा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है हमारी संस्कृति। हर क्षेत्र की अपनी बोली है, अपने शब्द और अपने बोलने का अंदाज होता है। हिमाचल की अलग अलग बोलियां हों या भारत के दूसरे राज्यों की स्थानीय भाषाएं, इनमें सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि पीढ़ियों की यादें, लोक कथाएं, परंपराएं और जीवन शैली भी जुड़ी होती है। जब हम किसी की भाषा या बोली का सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम उस व्यक्ति की संस्कृति और उसकी पहचान का सम्मान कर रहे होते हैं। और श्रोताओं, कई बार दो लोग एक दूसरे की भाषा पूरी तरह नहीं समझते, फिर भी मुस्कान, इशारे, संवेदना और अपनापन उन्हें जोड़ देते हैं। और यही एक कहते हैं ना कि यही भाषा का रूप है। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते तो मुस्कुरा कर भी हम एक दूसरे के साथ बहुत कुछ कह जाते हैं। तो श्रोताओं, हर भाषा का सम्मान हमें करना चाहिए और हर भाषा को समझने का, सीखने का एक जज्बा भी होना चाहिए। खैर, कहते हैं कि दूसरों की भाषा हमें मुश्किल लगती है, समझने में भी मुश्किल होती है, कहने में भी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हमें शौक हो, इंटरेस्ट हो, तो हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। अब अपनी बातों को फिर से यहीं पर रोकेंगे और आपको फिर से लिए चलेंगे गीत संगीत की ओर, क्योंकि कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला और समय है शाम का, और ऐसे में हम सभी दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं और इस समय अपने घर के काम भी करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा रेडियो गुंजन धर्मशाला भी ट्यून इन होता है और हम सुनते हैं प्यारे प्यारे गीत, तो हमारी थकान भी हट जाती है और अच्छा भी हमें लगता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कि श्रोताओं, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके लिए हम बहुत कोसते हैं। कई बार कहते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास भी होती, किसी और के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। और उसी चीज़ के लिए अगर किसी का अहित हो जाता है, बुरा हो जाता है, तब हम सोचते हैं शुक्र है हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो श्रोताओं, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि अब जो जानकारी आपको देने वाली हूँ आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा। पुलिस थाना गग्गल के अंतर्गत इच्छी गांव में पिछले दिन मंगलवार सुबह दिन दिहाड़े चपटमारी की एक वारदात सामने आई। मस्तपुर जाने वाली गली में एक अज्ञात स्कूटी सवार ने 85 वर्षीय विद्या देवी के कान से सोने की बाली झपट ली और मस्तपुर की ओर फरार हो गया। झपटमारी के दौरान बुजुर्ग महिला के कान में चोट लगने से खून भी बहने लगा। घटना की सूचना मिलते ही गग्गल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। श्रोताओं, पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए इच्छी मस्तपुर मार्ग के अलावा आसपास के घरों दुकानों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और फुटेज में संदिग्ध स्कूटी सवार कैद हुआ है। थाना प्रभारी उधम सिंह ने बताया कि सभी संबंधित थानों को भी सूचना दे दी गई है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी, ये है खबर जो आप तक पहुंचाई है और इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि आजकल के समय में सोने का जो भाव है वो इतना बढ़ गया है कि कोई इंसान उसे बनाने से पहले 100 बार सोचता है। पाई पाई इकट्ठी करके, बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके कोई छोटी सी चीज़ अगर सोने की लेता है तो उसके खोने का दुख और उसको खोने का जो एक सदमा आज के समय में कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन श्रोताओं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सोना है, उन्हें संभालने की चिंता है और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बनाने की चिंता है। और जब ऐसी खबरें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जान पर भी जोखिम बन सकता है। तो भाई, ऐसी चीज़ें जो हम हमेशा लोकर में ही रख सके, पहन भी ना पाएँ, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि जिनके पास नहीं है वो खुश होते हैं कि अच्छा है हमारे पास नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे जिनके पास ये चीज़ें हैं उन्हें संभाल के रखिए और अपनी जान पर ना बन जाए इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा गीत आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये गीत है ही बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। गैम्बलर फिल्म का ये गीत श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस अंतराल के बाद फिर से हम जुड़ेंगे आपके साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको सुनवाते हैं प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कहानी। एक गाँव में श्रोताओं, रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और उसकी सारी फसल सूख गई। घर में अनाज भी कम था और परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक शाम रामू खेत के किनारे उदास बैठा था, तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, बाबा अगर इस बार फसल नहीं हुई तो क्या होगा, हम अगली बार फिर से बीज बोएंगे। रामू ने बेटी से पूछा, लेकिन अगर अगली बार फिर बारिश नहीं हुई तो? बेटी मुस्कुराकर बोली, तो हम बारिश का इंतज़ार करने के बजाय कुएं से पानी लाएंगे, कोशिश करना तो हमारे हाथ में है ना। बेटी की बात रामू के दिल को छू गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और खेत में मेहनत शुरू कर दी। गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। धीरे धीरे खेत फिर से हरा होने लगा। कुछ महीनों के बाद रामू की फसल तैयार हो गई थी। उसने अपनी बेटी से कहा, तुमने मुझे उस दिन एक बहुत बड़ी बात सिखाई थी, मुश्किल समय में उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। तो श्रोताओं, ये छोटी सी कहानी है जो हमें भी सीख देती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, उम्मीद और लगातार प्रयास इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें भी मुश्किलों से लड़ना है और प्रयास को जारी रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और श्रोताओं, इस कहानी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से समय है आपको गीत सुनवाने का। तो चलिए कार्यक्रम में लेते हैं ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, आज की आवाज़ फिल्म से।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि 7:45 पर आपको सुनवाए जाते हैं प्रादेशिक समाचार। तो समाचारों से पहले एक बार फिर से ले लेते हैं एक प्यारा सा गीत, आई मिलन की बेला। इस फिल्म का गीत श्रोताओं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शिमला है। के समाचार, प्रदेश में मॉनसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 64,82,00,000 रुपए की दूसरी किश्त की जारी। पद्मश्री नेकराम शर्मा प्रधान

प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय टीम ने आज कुल्लू जिला के मनाली, बंजार और आनी क्षेत्रों के विभिन्न आपदा प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। केंद्रीय

0: संपत्तियों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन किया। एम रामचंद्रुडू ने बताया कि केंद्रीय दल ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नुकसान की समग्र रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम उसका आकलन करेगी और फिर राहत सहायता के संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगी।
1: भारत सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया है। हम लोग चंबा, कांगड़ा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह में जाके हम लोग जहाँ डैमेज हुआ था वहाँ हम लोग देखा है और असेस किया है। वो डिटेल्ड रूप से जो डैमेजेस हुआ है डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट फील्ड्स में, जो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जब मेमोरेंडम देगा, हमारा टीम विल एग्जामिन द प्रपोजल्स जो डैमेजेस हुआ है और जो हम लोग जो साइट्स में देखा है उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टडी करके हम लोग रिकमेंड करेंगे भारत सरकार को।
0: प्रदेश में मॉनसून के अंतिम चरण में हुई भारी बारिश के कारण लाहौल स्पीति और किन्नौर समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस बार मॉनसून में राज्य में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए कुल्लू, चंबा व कांगड़ा जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की मार से इस बार हिमाचल में सेब की फसल में भारी गिरावट आई है और अभी तक करीब 1,14,00,000 सेब की पेटियां बाजार में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल करीब 3 से 3.5 करोड़ सेब पेटियों की बंपर फसल हुई थी जो कई वर्षों में सबसे अधिक थी।
2: जो मॉनसून की आखिरी जो

0: रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश में कृषि से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ भी उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री ने हिमाचल में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की आय में वृद्धि और पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से लगातार सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। चंद्र कुमार ने कृषि अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि अनुसंधान और विकास के लिए संसाधनों में और वृद्धि करने का आग्रह भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
2: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
3: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
2: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे श्रीअन्न यानी मोटा अनाज के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के नांज गांव के किसान पद्मश्री से सम्मानित नेकराम शर्मा प्रधानमंत्री के प्रयासों को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं।

0: से ये शुरुआत हो गई थी और 2023 में मुझे जो पद्मश्री जो सम्मान से सम्मानित किया भारत सरकार ने, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब हम मिश्रित खेती करेंगे, 9 अनाज खेती करेंगे जिसमें दलहन तिलहन ये सब चीजें होंगी, अनाज होंगे, तो मिट्टी में अपने आप ही उसमें आच्छादन होगा। जब उसमें आच्छादन होगा, डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं पड़ेगी, तो उसमें नमी रहेगी, इस तरह से उसमें पानी का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 अनाज खेती को हमने करना शुरू किया, लोगों ने अब दोबारा से करना शुरू किया, अब उसको अच्छे से लोग कर रहे हैं।
1: स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज को लाभकारी मानते हुए लोग इनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
2: ये जो मोटे अनाज है ये बहुत ही फायदेमंद है, मैं खुद यूज कर रही हूँ जी। रागी का आटा, पौधे का आटा, जौ का आटा, ज्वार का आटा बहुत ही अच्छे है बच्चों के हेल्थ के लिए, बुजुर्गों के हेल्थ के लिए ये जी बहुत ही अच्छे हैं। और आजकल तो ये दलिया ओट्स ये सब आ रहे हैं और बच्चों को वेजिटेबल के साथ मिक्स करके हम दे रहे हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ जितना हो सके ये मोटा अनाज आप खाना शुरू कर दो।
1: पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। मेजर मनकोटिया का कल सुबह निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के

बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाशुर मॉनेस्ट्री के समीप लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर विकसित पैराग्लाइडिंग साइट का सफल ट्रायल किया गया। सफल ट्रायल से स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह है। साइट के निरीक्षण के दौरान एसडीएम केलंग कुनिका एकर्स, पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर गिमनर सिंह सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। कुनिका एकर्स ने बताया कि इससे लाहौल में साहसिक पर्यटन को गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मानसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 64,82,00,000 रुपए की दूसरी किश्त की जारी। पद्मश्री नेकराम शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयासों में कर रहे सहयोग। और पूर्व मंत्री मेजर विजय

0: पर। नमस्कार।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के साथ ही श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर पहुंच जाता है, तो चलते चलते अब आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत मस्ताना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और साथ ही श्रोताओं, इस कार्यक्रम को अब संपन्न करने की दीजिए सुषमा को अनुमति। जय हिंद।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
5: टीवी देखने बुलाएंगे?
6: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
7: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
8: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
9: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
8: क्यों?
9: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। अब देखो शुक्ला जी आ गए।
10: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
11: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
12: वही असली तरक्की।
11: एक कदम स्वच्छता की ओर।
13: मुझे उड़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

ये गजल भी मैंने अर्ज किया था ना, कुछ मेरी तरफ से मेरी फरमाइशों पर सुन लें, कुछ फिर आपकी फरमाइशें मेरे सर माथे पे वो सुनाऊंगा। ये भी नई गजल है, आगा बिस्मिल की ये गजल है।

गजल पेशी खिदमत है आगा बिस्मिल। गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह, तो अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा बीच में, उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा, ये वादा रहा, मगर गौर की जरूरत है।

एक चीज ऊपर वाले की ये देन है, उसकी मेहरबानी से है, अल्लाह की मेहरबानी से। 3 ऑक्टेव्स जिसको हम अपनी मौसीकी की जबान में सब तक कहते हैं, ये सब तक होती है 1 2 3, तो ये पूरी एक जैसी आवाज सुनाई।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन लेकर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। धर्मशाला में 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जाएगा। स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर लग सकता है प्रतिबंध। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों के अलावा अन्य आयोजनों पर रोक की तैयारी। एचपीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई क्रिकेट विकास की यात्रा। नई दिल्ली में गूंजेगी हिमाचल की महिला किसानों की आवाज। सम्मेलन में प्रदेश से 250 महिलाएं होंगी शामिल। एचपी टेट 2026 के लिए बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर। शिक्षण संस्थानों के लिए तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र का 15 अक्टूबर तक नवीनीकरण जरूरी। धर्मशाला में 3 दिवसीय एफपीओ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। कांगड़ा और चंबा के 28 प्रतिनिधियों ने सीखे व्यवसाय विस्तार के गुर। 3 वर्षीय व्यवसायिक लक्ष्य किए निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से।

धर्मशाला में इस वर्ष 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जाएगा। कार्निवल के आयोजन की तैयारियों को लेकर धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज फैरवा ने की। बैठक में कार्निवल के दौरान प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि कार्निवल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस दौरान संबंधित विभागों को कार्निवल की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों को लेकर भी संबंधित समितियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। प्रदेश के स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाने की दिशा में व्यवस्था तैयार की जा रही है। बताया गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है। हालांकि अब स्कूलों में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ साथ स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए नई दिशा निर्देश व्यवस्था तैयार की जा रही है। 31 तरह के अतिरिक्त कार्य शिक्षकों को करने पड़ते हैं और ऐसे कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो, इस दिशा में व्यवस्थाओं को लेकर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट ने पिछले ढाई दशकों में केवल मैदानों तक ही नहीं बल्कि आधारभूत ढांचे के स्तर पर भी लंबी यात्रा तय की है। करीब 26 वर्ष पहले जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी HPCA का वार्षिक वित्तीय बजट लगभग 20 लाख रुपए था, वहीं आज ये बढ़कर करीब 167 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व तक लगभग पहुंच चुका है। HPCA जिला क्रिकेट संघ मंडी के अध्यक्ष अजय राणा जी ने बताया कि प्रदेश में क्रिकेट के विकास की यात्रा को संस्थागत रूप से तब का रुख मिला जब वर्ष 2000 में अनुराग ठाकुर ने HPCA की कमान संभाली। उस समय संस्था का वार्षिक वित्तीय आकार करीब 20 लाख रुपए था। समय के साथ संस्था ने क्रिकेट सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और खेल के आधारभूत ढांचे के विकास पर काम किया। आज हिमाचल की क्रिकेट यात्रा में धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश की पहचान को मजबूत करने वाले प्रमुख स्थलों में शामिल है। वहीं मंडी का ऐतिहासिक पड्डल मैदान भी प्रदेश के क्रिकेट यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की 250 महिला किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगी। भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित ये सम्मेलन 30 सितंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन में देश भर से करीब 60,000 महिला किसान कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से महिला किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई हैं। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महिला प्रमुख डिंपल ठाकुर और प्रदेश मंत्री डॉ. नीलम ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से महिला किसानों के कृषि क्षेत्र में भूमिका और उनकी पहचान को मजबूती से सामने रखा जाएगा। साथ ही जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग भी उठाई जाएगी। सम्मेलन में कांगड़ा चंबा से 5-5 महिलाओं के शामिल होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुल्लू, मंडी, सोलन, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर और सिरमौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी महिलाएं सम्मेलन के लिए रवाना हुई हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HPTET 2026 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की ओर से पात्र अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाता है तो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 600 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाना जरूरी होगा। विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया जाए। जिन शिक्षण संस्थानों के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है या नवीनीकरण लंबित है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजकीय उच्च विद्यालयों और निजी विद्यालयों को परिसर में तंबाकू मुक्त वातावरण बनाए रखने संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। विभाग ने प्रत्येक विद्यालय को सालाना अपनी स्टेट्स रिपोर्ट का आकलन करने और उसके आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता बताई गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: बस दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
6: टीवी देखने बुलाएंगे?
7: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
8: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
9: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
10: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
10: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
11: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
12: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
13: वही असली तरक्की।
12: एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मुझे उड़ना है, मुझे पर...

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना है, मुझे बढ़ना है।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
2: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
3: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: एकदम।
4: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है, समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
5: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
6: जुबान।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन, प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज सिमरन प्लीज।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कहता।

0: तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।